फिर कब मिलोगी। यह है फिल्म का नाम, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मुकेश की आवाजें थी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में हाथ की सफाई फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

हाथ की सफाई फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाजों में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मुकेश के और साथियों की आवाज़ों में आपने अभी सुना। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से

0: अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
5: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री

0: पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2,441 रुपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीला अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं

हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं। अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।

सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: प्रणव विश्वास, हंसिका अय्यर, स्वानंद किरकिरे की आवाजों में आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था राजनीति और इस गीत को स्वानंद किरकिरे ने लिखा था और शांतनु मोइत्रा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये साली जिंदगी है का फिल्म का गीत, इसे संगीत से संवारा था निशात खान ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की।

देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। इरशाद कामिल का लिखा हुआ रांझणा फिल्म का गीत आप

रंजना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया, और इसे इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था। A.R. रहमान ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लुटेरा फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर की आवाज।

मोनाली ठाकुर की आवाज में आप सुन रहे थे लुटेरा फिल्म का गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। लीजिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए डंकी फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह की आवाज। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

0: दंगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें हैं, देव कोहली के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

निर्माता निर्देशक राजकुमार मरजातिया का आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र नमन। उनके बैनर तले बने फिल्मों में मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसे सुंदर सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने परिवारों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज का आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल के।

इरशाद कामिल के बोल आपने सुने, हिमेश रेशमिया का संगीत था। ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से।

तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम एक था टाइगर।

तरन्नुम मलिक मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब फिर वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत और आपको अब सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की ये आवाज़ें।

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। आज सुनिएगा श्रृंखला शाम 6:45 पर, श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आज। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम आज सुनेंगे। इसके अंतर्गत गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनेगा भाग दूसरा होगा आज। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना, ये वनवास फिल्म का गाना है। नाना पाटेकर शान और मोंटी शर्मा की ये आवाज़ें।

0: वनवास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजें थी। सुनील शिव का ये गीत लिखा हुआ था और मोंटी शर्मा का संगीत था। ये चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

बार बार देखो फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमर आरशी और साथियों की आवाज़ों में जैस्लीन रॉयल का ये संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसी

राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे गाया

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन, और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर। की हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है।

0: लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों शो में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत होंगे, या ये डायलॉग इबारत को पूरा करने के उद्देश्य से डाला गया है, या इन डायलॉग्स में जो शब्द है उनको आधार बनाकर गीतों को प्रस्तुत होगा। अब ये बात वो समझ नहीं पा रहे, उनका कहना है कि बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के संवाद गीतों का सफर लगता है और साथ साथ चलेगा तो क्या होता है। देखिए, सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है। भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की इबारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत तो होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना है उनके नाम है दो बदन, डॉन, पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। अच्छी पकड़ी हमारे एक श्रोता ने, तो 15-20 गाने भेज दिए हैं चुनकर। कितनी बढ़िया बात है ना, कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम जहाँ से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नजर आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया, रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया, मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को पकड़ना, डॉन पकड़ में नहीं आता। और इससे इबारत, इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर, उस आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी किधर भागे कभी किधर भागे।
1: अरे तुम काका बताई भैया हमरा हाल का है।

0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जा।

0: ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म। अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं, और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है कि आपके पाँव बहुत हसीन है रे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ डॉन, जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आई हेट ट्योर पुष्पा, आई हेट ट्योर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स। मतलब मैं जी, हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ, ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के। गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियां होती हैं। ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से चाहो तो भी वापस ना आ सको। यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं, और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफर इसमें चल रहे हैं, और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार ना मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएँ तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं सपनों को टूटते नहीं देखा, दूसरा है जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और तीसरा है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये तो काहे को खत्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी LPG खत्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, ज़रूरी भी है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं। ये राजकुमार जी का जरा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सब इस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से। आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना कभी दर्द नहीं होता, तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं। इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफ़र में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं यहाँ धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है बंगला है पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफ़र के साथ, सफ़र यानी डबल सफ़र करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफ़र के साथ साथ ट्रेन के सफ़र का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोदड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सबकी हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है, और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी। और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे, तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगे, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं, तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखती हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की ये फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए, हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मोगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं क्या? आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप ज़रा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो ढोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा 8 ईयर्स मोगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है, मेरा नाम सुरमा भूपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब, गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है दो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है, और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंती इनके सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी, कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं। और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं, और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है, और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने ज़माने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए, और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है, और ज़रा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता ने दिया है। और इसके साथ में आपको अलग अलग गीतों की कई सारी बातें बनाऊंगी, तो एक डायलॉग मैंने लिया है, पिक्चर अभी बाकी है।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, जरूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: मुझे तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है, उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली। मौत तो एक कविता है, मुझाए मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीला अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
6: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा साहस शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ. आइए सुनते हैं ये संदेश.
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत.
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा.
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून.
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है.
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना. विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ.
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा.
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी.
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है.
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर. आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी.
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां.
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत.
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी.
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास. भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं.
1: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर.
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से, गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ.

हम सुन रहे थे ये गीत काला पानी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दांव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

हम सुन रहे थे मधुमती फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से। सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना।
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं।
2: जी बिल्कुल,
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
2: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
2: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लगकर बताएंगे।
2: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
1: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
2: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
1: देखो
2: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला साधारण नहीं।
1: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
2: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी हैं, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
1: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहां पर हम KG1 KG2 के जब पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो है।
1: जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
2: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर
0: जी
1: पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन
1: बिल्कुल।
0: चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है,
0: जी
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या
0: जी
1: 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत
0: जी
1: दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि
1: जी
0: बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है, तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। तो
1: बिल्कुल
0: आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौर, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे, और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने
1: जी
0: लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो, तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं ना कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां
1: रंगो जी
0: अल्पना
1: जी
0: बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी, कभी घोड़ा, और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी, और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरी बाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
0: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे,
1: जी उनके पति चले आए
0: हाँ,
1: पति के साथ।
0: पति के
1: जी
0: साथ वो चली आई, और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी
1: जी
0: दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे, लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा
1: ये
0: गया।
1: उनको कहा, तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरी बाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहाँ जी
0: भाई उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी, और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरी बाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
1: भूरी बाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी, जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
0: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
1: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है, और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी, जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
0: और भूरी भाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन ले
1: चलिए।

0: पानी पता है कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है,
1: बिल्कुल
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते
0: जी,
1: आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते, जन्म से संबंधित होते हैं।
1: जी
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही,
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ, पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो
0: जी
1: तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: हानि बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छीछी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो

0: नहीं होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वो ही होगा। ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वही होगा।
1: ओए जम के एक जमा दूं, दूध।

उंगली से उंगली का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन, पांच से पांच मिले।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना।
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं। वो तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए, कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए, अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते,
1: सही बात है,
0: है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया, हमारे ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भाई बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है,
1: वर्षगांठ है।
0: तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं। तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप ज़रूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर ख़रीदारी करना इनकी कितना आसान EMIs पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, न किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल EMI और UPI का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पर जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीज़ें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीज़ों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किश्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना तो आप

0: तो उन्हें कहीं लिख कर रखें। अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना, अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको रखनी
1: होनी चाहिए,
0: या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है, बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार के नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक पे चली
0: और
1: जाती
0: वो
1: है।
0: जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथ ही लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की उसमें महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है।
1: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किस्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
0: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा दें?
1: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है। हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है, और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफी या चाय

0: सफ़ेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में, वहाँ रगड़ कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं। नीम के पत्तों को उबाल कर, नींबू का रस निचोड़ कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचल कर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको
0: जी
1: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
0: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
1: चलिए।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक

0: अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
1: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर तो आमतौर पर व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
0: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
1: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
0: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
1: जी।
0: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
0: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
1: जी,
0: मेरे बचपन की तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
1: जी।
0: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया। बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
1: अच्छा।
0: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का, लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी, कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही

0: रेज कर रहा था कि नहीं, तुमने अगर तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी. सो दैट वाज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में. सो लाइफ तो सेट थी. एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम. एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है. बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम. सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की. उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स एसएसबी देने के लिए. और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड. और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ एसएसबी. वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा.
1: अमेजिंग. और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठे.
0: जी बिल्कुल.
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए, है ना. तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की. इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है.

0: हैं दोस्तों संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी
0: लर्न की, प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
2: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
2: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
2: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
2: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है। सो दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
0: अच्छा प्रतीक्षा जी एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए। लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
2: जी देखिए, डिसिप्लिन आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेज में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेज बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है. आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
2: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
0: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूं. तो ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आपने ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
2: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है जी. क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट के साथ कंधे से कंधा मिला के चले. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग

0: में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
1: जी बेहतरीन, मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूं वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी वैसे तो काफी है, पहला तो था और अभी भी है जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड,
1: हां जी, उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओ वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: तो जब हम राजपथ पे चले तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैं आपको पहले बताया, हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाए, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार है आपके। प्रतीक्षा जी एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
0: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया, बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
0: क्या बात है।
1: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
0: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
1: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है।
0: 2-3 दिन में?
1: जी हाँ। और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
0: जी,
1: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
0: हाँ।
1: लेके सुसाइड मिशन पे निकली हूँ।
0: ओह माय गॉड।
1: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
0: इनर स्ट्रेंथ।
1: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम, एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
0: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है, आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी।
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी।
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो।
0: हाँ।
1: लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए।

0: अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है.
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस है. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी.
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है. संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए?
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज शुरुआत में कहना चाहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल इन ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं।

0: ने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही
0: जी,
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ही छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी,
1: कि जब आप कह रहे हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री

0: तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
1: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेज से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉर्पोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
0: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
1: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे
0: जी,
1: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
0: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितने भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
0: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
1: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बार तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे, साथ ही इन गर्मियों के मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि इन गर्मियों के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और साथ ही सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफ़र एकता। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी करेंगे ढेर सारी बातें चर्चा से जुड़ी, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज दिन है गुरुवार और गुरुवार को होता है हमारा खास क्रम खेल इस सप्ताह, जिसमें मैं आपको दूंगी इस हफ्ते खेल से जुड़ी जानकारी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफ़र के साथ।

दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इस एकता को मजबूत बनाने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं माध्यमों में से एक है आकाशवाणी, जिसने अपने 90 वर्षों की यात्रा में देश को जोड़ने और सामाजिक समानता का संदेश फैलाने का कार्य किया है। फ्रेंड्स, आकाशवाणी की शुरुआत वर्ष 1936 में हुई थी। तब से लेकर आज तक ये देश के कोने कोने तक समाचार, शिक्षा, संगीत, सांस्कृतिक और जागरूकता के कार्यक्रम पहुंचाने का कार्य कर रही है। पहले के समय में जब टीवी और इंटरनेट की सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं थी, तब रेडियो ही लोगों के मनोरंजन और जानकारी का मुख्य साधन था। गाँव में रहने वाले लोग भी रेडियो के माध्यम से देश दुनिया की खबरें सुनते थे। इससे लोगों को में जागरूकता बढ़ी और समाज में एकता की भावना मजबूत हुई। साथियों, आकाशवाणी ने हमेशा समाज के हर वर्ग को समान महत्व दिया। इसके कार्यक्रमों में किसानों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के लिए विशेष सामग्री प्रसारित की जाती रही है।

दोस्तों, किसानों के लिए खेती से जुड़ी जानकारी, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम समाज को आगे बढ़ाने में सहायक बने हैं। इससे लोगों ने नई जानकारी मिली और वो अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए। फ्रेंड्स, सामाजिक समानता की दिशा में आकाशवाणी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंच जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी लोगों को एक समान अवसर देता है। इसके माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, लोकगीत, भाषा और परंपराओं को पूरे देश तक पहुंचाया जाता है। इससे लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना विकसित होती है। साथियों, आज के डिजिटल युग में भी आकाशवाणी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है। अब इसके कार्यक्रम मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से भी सुने जा सकते हैं। नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ते हुए भी ये भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का कार्य कर रही है। फ्रेंड्स, आकाशवाणी केवल एक रेडियो सेवा नहीं बल्कि भारत की एकता, संस्कृति और सामाजिक समानता का सशक्त प्रतीक है। पिछले 90 वर्षों में इसने देश को जोड़ने, जागरूक बनाने और समाज में समानता की भावना विकसित करने में अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले समय में भी आकाशवाणी एकजुट भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी बातें आकाशवाणी @90s से जुड़ी, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के समय में शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। केवल पढ़ाई करने से ही पूर्ण विकास नहीं होता, बल्कि खेल कूद भी शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए खेल और शिक्षा में संतुलन बनाना सफलता की सच्ची कुंजी मानी गई है। शिक्षा हमें ज्ञान, समझ और अच्छे संस्कार देती है, वहीं खेल हमें अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और धैर्य सिखाते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ खेलों में भी भाग लेते हैं, वे मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं। खेल तनाव को कम करते हैं और मन को प्रसन्न रखते हैं, जिससे पढ़ाई में भी ध्यान अच्छी तरह लगता है। दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम से जुड़ी हम आज वार्ता सुन लेते हैं। वार्ता का विषय है खेल और शिक्षा में संतुलन, सफलता की कुंजी। वार्ताकार हैं हर्षदीप सिंह।
6: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षदीप सिंह है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन, खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विषय है खेल और शिक्षा में संतुलन, सफलता की कुंजी। यह एक ऐसा मंत्र है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ा देता है, बल्कि एक समृद्ध और स्वस्थ समाज की नींव भी रखता है। शिक्षा और खेल, दो पहलू एक मंजिल। हमारे समाज में अक्सर ये धारणा रही है कि शिक्षा और खेल एक दूसरे के विरोधी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पढ़ाई में समय देना ही सफलता की गारंटी है, जबकि खेल को केवल मनोरंजन या समय की बर्बादी माना जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह सोच पूरी तरह से गलत है। शिक्षा हमें ज्ञान, तर्क और समझ देती है और दूसरी ओर खेल हमें अनुशासन, सहन शक्ति और नेतृत्व की कला सिखाता है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें संतुलन ही हमें एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है। शिक्षा हमें किताबी ज्ञान, नैतिकता और जीवन के लिए आवश्यक कौशल देती है। यह हमें दुनिया को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने की क्षमता प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें हार को स्वीकार करना, जीत को विनम्रता से लेना और टीम वर्क की भावना को अपनाना सिखाता है। जब इन दोनों का संतुलन बनता है तो हम न केवल एक अच्छे छात्र बनते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक और एक सच्चा लीडर भी बनने की कोशिश करते हैं। आखिर शिक्षा और खेल में संतुलन की आवश्यकता क्या है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ तनाव और प्रतिस्पर्धा हर कदम पर हमारा इम्तिहान ले रही है, खेल और शिक्षा का संतुलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं कि संतुलन क्यों सफलता की कुंजी है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। लगातार पढ़ाई और किताबों में डूबे रहने से मानसिक थकान हो सकती है। खेल इस थकान को दूर करता है। यह हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। जब हम शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो हमारी एकाग्रता और स्मृति में भी सुधार आता है, जो पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। दूसरा, अनुशासन और समय प्रबंधन। खेल हमें समय का महत्व सिखाता है। एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास, पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह समय प्रबंधन का कौशल हमें जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाता है। उदाहरण के लिए, हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में भी कई बुलंदियां हासिल की। यह संतुलन ही उनकी सफलता का राज है। तीसरा, सामाजिक कौशल और नेतृत्व। खेल हमें टीम में काम करना, सहयोग करना और नेतृत्व करना सिखाता है। चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, या क्रिकेट की पिच हो, या बैडमिंटन कोर्ट, हर खेल हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने की कला सिखाता है। यह गुण हमें केवल स्कूल या कॉलेज में नहीं बल्कि नौकरी और सामाजिक जीवन में भी आगे ले जाता है। भारतीय संदर्भ में खेल और शिक्षा। भारत में जहां शिक्षा को हमेशा सर्वोपरि माना गया है, अब समय आ गया है कि हम खेल को भी उतना ही महत्व दें। हमारे देश में खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हाल के वर्षों में नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल और बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया है। ये सभी खिलाड़ी न केवल अपने खेल में उत्कृष्ट हैं, बल्कि उन्होंने अपनी शिक्षा को भी महत्व दिया। हमारी सरकार भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम और स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने की योजनाएं इस बात का प्रमाण है। जब खेल को शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन यह बदलाव केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि हमारे समाज, स्कूलों और परिवारों में भी होना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों के लिए भी प्रोत्साहित करें। अब हम शिक्षा और खेल में संतुलन कैसे बनाएं? सबसे पहले हमें समय का प्रबंधन करना होगा। एक निश्चित समय सारणी बनाएं जिसमें पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समय निर्धारित हो। उदाहरण के लिए, सुबह या शाम का समय खेल के लिए हो और दिन का बाकी समय पढ़ाई के लिए रखा गया हो। स्कूलों को खेल को केवल एक गतिविधि के रूप में नहीं बल्कि पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। खेलों के लिए कोच और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की रुचि को समझें और उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यह जरूरी नहीं कि हर बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बने, लेकिन खेलों से मिलने वाली अनुशासन और आत्मविश्वास उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। आज के समय में खेल केवल एक शौक नहीं है बल्कि एक सम्मानजनक करियर विकल्प भी है। खेल प्रवक्ता और कोचिंग जैसे क्षेत्र भी युवाओं के लिए एक अवसर खोल रहे हैं। यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, खेल और शिक्षा का संतुलन न केवल व्यक्तिगत सफलता की कुंजी है बल्कि यह एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव भी है। जब हम अपने बच्चों को किताबों के साथ साथ खेल के मैदान में भी उतरने का मौका देंगे तो यह एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो न केवल बुद्धिमान बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत भी होगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में खेल और शिक्षा के बीच संतुलन बनाएंगे। यह संतुलन हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध करेगा बल्कि हमारे देश को भी गौरवशाली बनाएगा। आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहाँ हर बच्चा पढ़ाई और खेल दोनों में उत्कृष्टता हासिल कर सके। धन्यवाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दोस्तों, तो हमने जाना वार्ता के द्वारा कैसे खेल और शिक्षा का संतुलन बना के रखना चाहिए। वार्ता का विषय था शिक्षा और खेल में संतुलन, सफलता की कुंजी। वार्ताकार थे हर्षदीप सिंह। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। अब चले चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। हर दिन नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। इन्हीं तकनीकों में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्हें हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ये ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनें और कंप्यूटर मनुष्य की तरह सोचने, समझने, निर्णय लेने का कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है और भविष्य में इसका प्रभाव और अधिक बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स, एआई का उपयोग आज शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, परिवहन, कृषि और मनोरंजन जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा, अस्पतालों में रोगी की पहचान, मोबाइल में इसका उपयोग लोगों का कार्य आसान बना रहा है और तेज हो गया है। भविष्य में एआई और अधिक उन्नत होगी। हालांकि एआई के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे मशीनों के बढ़ते उपयोग से कुछ लोगों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा तकनीक का गलत उपयोग समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए एआई का उपयोग सोच समझ कर और मानव रहित में करना आवश्यक है। साथियों, एआई भविष्य की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। ये मानव जीवन को नई दिशा देने के साथ साथ विकास के नए अवसर प्रदान करती है। हमें इसका सही उपयोग करके एक बेहतर और उन्नत भविष्य का निर्माण करना चाहिए।

दोस्तों अब चलते हैं आज के खास क्रम की ओर, जो है खेल इस सप्ताह। तो हमारे इस क्रम से जुड़ी आज की जानकारी है, फ्रेंड्स, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान सुपर शतरंज क्लासिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की, क्योंकि हर जगह नदी तालाब पाइप के पानी सूख जाते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम जल संरक्षण पहले से करें, क्योंकि जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी आवश्यक है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए जल का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। आज इसलिए जितना हो सके जल संरक्षण की ओर ध्यान दें। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और अपनी रेडियो फ्रेंड को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी की ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति रानी राजश्री की है और प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: हेलो, दिल की धड़कन बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सफर में आपके साथ हूँ रानी राजश्री। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला।
1: हेलो
0: हेलो जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना परिचय दें।
1: जी, मेरा नाम शिवम सिंह है जी। मैं अभी वर्तमान में मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ।
0: सर, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही शुरुआत से?
1: जी, मैं शुरू से तो हमारी पढ़ाई मतलब जो प्राथमिक विद्यालय होता है वहाँ से शुरू हुई, गवर्नमेंट। उसके बाद मैं संत जेबीएस में पढ़ा, फिर उसके बाद आरएसएम इंटर कॉलेज सोनभद्र में, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं लखनऊ चला गया, तो वहाँ से मैंने अपना यूजी और पीजी दोनों मास कम्युनिकेशन से किया है
0: जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा फील्ड है ये, तो इस क्षेत्र के जरिए आप क्या करना चाहते हैं?
1: मुझे रिपोर्टिंग करना इसमें पसंद है, मीडिया में जो न्यू मीडिया के समय है, तो मेरा वही क्षेत्र है, उसी में काम करना मुझे।
0: जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं आपके हिसाब से?
1: जी, मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ। जो वास्तविकता मुद्दा नहीं उठाती है तो हमें लगता है कि हम उस चीज को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को मुद्दे को उठाएंगे, हम उस चीज को उठा के उस अपर लेवल तक ले जाएंगे जहाँ तक समस्या का निदान हो सकता है, तो ही बदलाव हो सकता है। प्रत्यक्ष तौर पे हम बदलाव नहीं कर सकते, एक सहारा बन सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनकी समस्या को पहुंचा सकते हैं ताकि एक समाज सुधरे और जो जागरूकता हो फैला सके।
0: जी बिल्कुल, और जरूरी भी है। समाज में अगर बदलाव करना है, समाज का वास्तविक तौर पर अगर विकास करना है, तो ये मुद्दे हमें उठाने ही होंगे।
1: जी
0: सर, आज इस कार्यक्रम में गीत आप कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: 90s का कोई एक सॉन्ग सुना दीजिए।
0: जी बिल्कुल, 90s के जो गीत है वो वाकई सदाबहार हैं, लेकिन कोई खास जो आपको याद हो?
1: सर की जो सर से चुनरी करके कुछ है वो सुना दीजिए।
0: हाँ, सर की जो सर के धीरे धीरे।
1: जी जी,
0: तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: मैम नमस्ते।
1: जी नमस्ते, कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: जी
1: जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दें।
0: मैं ग्राम करारी से अभिषेक तिवारी बोल रहा हूँ।
1: और अभिषेक जी, क्या करते हैं आप?
0: अभी तो इस समय पढ़ाई करते हैं।
1: जी, पढ़ाई में क्या?
0: 12th कक्षा में है।
1: और स्ट्रीम कौन सा है आपका?
0: आर्ट है।
1: अभी आप जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे के लिए क्या सोचा है भविष्य में करने को?
0: आर्ट लिया तो वही UPSC लाइन में।
1: जी बिल्कुल, तो तैयारी इसकी आप अभी से कीजिए। तो किस तरह से तैयारी करते हैं?
0: न्यूज वगैरह सुनते हैं उसी के माध्यम से, और GKGS एक यूट्यूब पे है,
1: जी
0: आते हैं पर उनका भी देखकर।
1: जी, मतलब सोशल मीडिया का भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए।
0: जी,
1: हम आपके बेहतर भविष्य की कामना भी करते हैं, आप बहुत सक्सेस हों और आगे बढ़ें। तो अभिषेक जी, रेडियो सुनते हैं आप?
0: बोलिए। जी सुनते हैं।
1: जी, कौन से कार्यक्रम?
0: युवाणी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और गाने सुनना तो आपको पसंद है, क्योंकि आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया है। तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गाने का जो मोटिव है वो सक्सेस भी होगा। तो आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। सुनो।

0: हेलो
1: हाँ, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ।
0: जी मैम, कार्यक्रम हेलो फरमाइश, आपका परिचय।
1: मेरा नाम है राजनी द्विवेदी,
0: जी
1: प्यार से मुझे प्रिया भी बोलते हैं।
0: क्या बात है, क्या मैं भी आपको प्यार से प्रिया बोल सकती हूँ?
1: श्योर, आप मुझे बोल सकती हैं, मुझे पसंद है प्रिया सुनना।
0: जी जी जी मैम, क्या करती हैं आप?
1: मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, विलेज में रहती हूँ,
0: जी
1: और हाँ, मैं वहाँ पे गांव से जुड़े हुए काम भी करती हूँ। मैं पंचायत असिस्टेंट हूँ।
0: जी तो प्रिया, गांव की तरक्की के लिए क्या कुछ करती हैं आप?
1: गांव की तरक्की के लिए तो नहीं, पर उनके गांव में जितने लोग हैं उनकी समस्याएं सुनती हूँ, मुझसे जो हो पाता है,
0: जी
1: जैसे गवर्नमेंट जो भी लाती है, जैसे पेंशन हुआ,
0: जी
1: और हाँ, उनकी समस्याएं जो होती है मैं वो समाधान करने की कोशिश करती हूँ, उनकी बातें अपने हेड तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ।
0: जी बिल्कुल। जो सरकारी स्कीम होते हैं, जो लोगों के फायदे के लिए होते हैं, वो अक्सर नहीं पता होते हैं।
1: हाँ,
0: तो
1: नहीं पता।
0: बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है विकास में लोगों के। और साथ में प्रिया, आप क्या करती हैं और?
1: वैसे तो मैं स्टडी भी करती हूँ,
0: जी
1: और छोटे मोटे जो अभी तो काम में लगी हुई हूँ, कुछ अपने खर्चे भी निकल जाते हैं।
0: जी
1: हाँ, मैंने कुछ एग्जाम्स वगैरह कभी कभी देती रहती हूँ बीच में, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं,
0: जी
1: कोशिश करती हूँ थोड़ा सा और अपने आप को ग्रो करने की।
0: आपने ये बात कही कि खुद को ग्रो करने की आप कोशिश करती हैं। हमें खुद के बारे में ग्रो करने के लिए सोचना चाहिए। अक्सर हम बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन खुद पर नहीं।
1: जब हम ग्रो करेंगे तो लोगों के भी विकास के बारे में सोचेंगे।
0: बिल्कुल। तो मैम, गाने सुनती हैं आप?
1: बहुत पसंद है गाने, मुझे गाने सुन के तो काम करती हूँ मैं।
0: क्या बात है। तो आज गीत कौन सा?
1: आज मुझे सुना दीजिए धुरंधर मूवी का गहरा हुआ, बट
0: गहरा हुआ। गुनगुनाएंगी क्या?
1: मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट
0: कोई बात नहीं।
1: टाइम जब आऊंगी
0: जी
1: आपकी हेलो फरमाइश में
0: जी
1: तो गाने जरूर सुनाऊंगी।
0: बिल्कुल मैम, मैं यही उम्मीद भी आपसे करती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मधुर सी है। ठीक है मैम।
1: और आपकी मुझसे भी प्यारी है।
0: ओह थैंक्स। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रेहान है, मैं ओबरा से बात कर रहा हूँ।
0: जी। सर रेहान, क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताएं।
1: मैम, अभी मैंने 12th पास किया है, नीट की तैयारी कर रहा हूँ।
0: आगे और क्या क्या करना चाहते हैं इसके साथ साथ।
1: अभी तो मैम बस मेरा फोकस नीट की तैयारी पर है और इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, यही सोचा है अभी।
0: बिल्कुल, हमारी यही कामना भी है कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। और रेहान, अभी जैसा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे।
1: हाँ मैम, टेम्परेचर जैसे कि बढ़ रहा है तो इसमें जो गर्मी में जो हम लोगों को आमतौर से सावधानियां बताई जाती हैं वो
0: जी
1: हम लोगों को रखनी है, जिससे कि गर्मी की वजह से सेहत पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। कि
0: बिल्कुल
1: बाहर जाते समय आप हल्के सफेद रंग के कपड़े पहने और पानी वगैरह साथ में लेकर जाए, जिससे कि लू वगैरह लगने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, कुछ सावधानियां रखकर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति ख्याल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण के लिए हम और क्या कर सकते हैं। आप एक युवा हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे।
1: हाँ जी मैम, पर्यावरण के लिए देखिए सबसे मेन काम है पेड़ लगाना।
0: जी
1: आप अपने आसपास पेड़ लगाएं, पेड़ पेड़ ही से समझिए हम लोगों का जीवन है, तो पेड़ लगाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला काम तो है कि पेड़ लगाना है।
0: बिल्कुल, और इससे बहुत हद तक हमारा क्लाइमेट निर्भर भी करता है। तो आज इस कार्यक्रम में आपकी बात हो रही है, तो गीत कौन सा आज आप सुनना चाहेंगे।
1: हाँ, एक मेरा फेवरेट गाना है मैम, नॉइंट्री मूवी का, इश्क दी गली विच, वो आप बता देना।
0: तो चलिए आपकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं ये गीत।
2: हाय हाय हाय हाय हाय चिकनी चिक

0: हेलो, कार्यक्रम हेलो फरमाइश
1: जी
0: जी। सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं, आपका परिचय?
1: हम लखनपुरा से बोल रहे हैं, जो सोनभद्र जिले में है, रावर्स जंग तहसील में।
0: जी जी सर
1: हमारा नाम है अशोक कुमार तिवारी।
0: जी सर,
1: जी,
0: अभी आप क्या करते हैं?
1: अभी समय तो हम कुछ नहीं करते हैं, मतलब हमको अब गवर्नमेंट ने निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया है।
0: ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया है, अपनी सेवा दी है, ये एक रेस्ट करने का टाइम होता है। अभी जैसे कि आप घर परिवार में रह रहे हैं और पहले जब आप जॉब करते थे, कैसा अनुभव रहा दोनों समय का?
1: अब अनुभव से काम, जब नौकरी करता था आदमी तो उसमें व्यस्तता बहुत काफी थी,
0: जी
1: अपने घर में 10 लोगों से मुलाकात होती थी।
0: जी जी
1: अब थोड़ा रिटायर होने के बाद सीमित हो गया है समय,
0: जी बिल्कुल
1: और अब यहाँ पर जैसे कम लोगों से मुलाकात होती है, कभी कभार रावर्स आना जाना होता है तो लोगों से मुलाकात हो जाती है।
0: जी
1: अब वैसे ही समय कट रहा है, अब हम लोग रिटायर बैठे हैं।
0: अपने घर परिवार को जो एक समय जो हम कम दे पाते हैं, वो अभी पूरा वक्त आपके पास है, आपके हाथ में है। तो सर, अभी के समय को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आज आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को?
1: देखिए, हम आपके आकाशवाणी के बहुत पुराने श्रोता हैं
0: क्या बात है सर,
1: और आपके आकाशवाणी से हमें सर्वश्रेष्ठ श्रोता का पुरस्कार दिया गया था।
0: वाह।
1: और चूंकि हमारा रुझान आपके आकाशवाणी के कार्यक्रमों से शुरू से ही रहा, जब
0: जी
1: आकाशवाणी आपका शुरू हुआ था उसी समय से हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, और आपके आकाशवाणी में हम कविता कहने के लिए भी जाते हैं, काव्य पाठ में।
0: जी
1: हाँ, तो साहित्य से भी हमारा जुड़ाव है, लगाव है।
0: जी बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए सर, तो आपका बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी के प्रति भी रहा है।
1: जी, यही कहना चाहेंगे कि देखिए जो ये दौर चल रहा है, हम ये कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आकाशवाणी का है। टीवी अगर आप देखेंगे तो जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ नहीं देख पाएंगे।
0: जी
1: और रेडियो तो आप खोल दीजिए, रेडियो बजती है और अपना काम करते रहिए, रेडियो से आपके तरह तरह की जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे खेती किसानी है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है, गृहिणी के लिए कार्यक्रम है।
0: जी
1: हम श्रोताओं से यही कहेंगे कि आप आकाशवाणी से अधिक संख्या में जुड़े और इसका लाभ उठाएं, यही हम कहेंगे।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी जनहित की सेवा में ही उपलब्ध है, और ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हमारे श्रोता सुनेंगे भी और जुड़ेंगे भी। सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गीत कौन सा आप सुनेंगे?
1: हमको एक नदिया के पार का गीत सुना दीजिए, कौन दिशा में लेके चला रहे, तो पुरानी याद ताजा हो जाएगी ना।
0: जी बिल्कुल, ये गांव घर की जैसे लगती है कि बिल्कुल अपनी बात है।
1: हाँ,
0: ठीक है सर, आपकी पसंद पर हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। और कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति रानी राजश्री की थी और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

0: नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। गृह मंत्री अमित शाह आज गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में हिस्सा लेना है। इस मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहने की एनडीआरएफ दो दशक के कम समय में देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा जीत ले हवे।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिफाइनिंग 9 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोग्रेस टू प्रॉस्पेरिटी उत्तर प्रदेश लीड्स अहेड कॉन्क्लेव में शामिल भेल। ए मौका पर वहां के कहने की प्रदेश के अंदर अब कौनहु सेक्टर में, चाहे वो सुरक्षा हो है, रोजगार हो है, आ चाहे एग्रीकल्चर ग्रोथ, विकास का एगो नया मॉडल देखे के मिल रहल बा।
2: अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। 75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल का पहला बैठक कैलें। इस दौरान मुख्यमंत्री मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण आ उत्तरदायी कार्य संस्कृति के बढ़ावा देवे बदे महत्वपूर्ण निर्देश देने। वहां के कहने की यह समय का वैश्विक परिस्थिति के देखत ईंधन संरक्षण खाली आर्थिक जरूरत नहीं बा, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचत को अपील आ प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल का असर दिखाई देवे लागल बा। प्रस्तुत बा एगो खास रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन आज अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली में बतौलिन कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद सरकार के कई गो पहल के नाते देश में ईंधन का पुरहर स्टॉक उपलब्ध बा।
4: एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के
0: संभावना जतौले हो। विभाग प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी जिलन में बिहने से दिन के समय कहीं कहीं लूहो चलने का येलो अलर्ट जारी कैले बा। ए बीचे पछिला 36 घंटा में आंधी पानी या बिजली गिरने के घटना में प्रदेश भर से करीब 60 जने का मौत आ सैकड़न लोगों के घाही भइले का समाचार बा। एगो रिपोर्ट।
5: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम में भइल बदलाव के नाते होखली जन धन के हानि के देखत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक कैके प्रभावित लोगों के मुआवजा देहले का निर्देश देहले हमें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। गंगा बहिन राम राम हो।
1: बहिन राम राम। बहुत तू ब्याह में व्यस्त हो आजकल देखा।
0: अरे गंगा बहिन देखा उहे हम तुमके कहत रहनी हो। एकदम उहे के बात छोड़ लेलू हा। देखा शादी ब्याह के समय चलत बा तो का करी, घरे दुआरे के ब्याह बा तो देखा ना चाहते हुए देखा ऐसा संबंध होला ना कि हम लोगन के जाहे की जाए के ही पड़ाला, उमे शरीक होए के ही पड़ाला।
1: और कहीं न कहीं गुलाबो बहन की अपने के भी अच्छा लगेला
0: बिल्कुल। और देखा
1: तो निभावे की बटबे
0: गंगा बहन यही सबका दिन का तो अगोरल जला हो इंतजार रहेला कि घरे में शादी ब्याह पड़े,
1: सबसे मुलाकात,
0: सबसे मुलाकात,
1: समाचार
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नाच गाना कुल चीजें हो जाला।
0: अरे एकदम। और सबसे बड़ी बात ना एक दूसरे से जो भेंट मुलाकात हो जाला। कहे कि देखा अगर शादी ब्याह घरे में न पड़े, कोनो अगर फंक्शन न पड़े घरे में हो तो नात रिश्तेदार से भेंट मुलाकात न हो। कहे कि आजकल का जो समय बना गंगा बहन बड़ी व्यस्त बा हो, सब केहू अपने अपने लेकिन बच्चों के पढ़ाई में व्यस्त बा। कहीं देखत हो कि जहाँ पढ़ाई अगर नहीं भी बा तो घरे का काम काज इतना जिम्मेदारी बढ़ हो जाला कि अपन का करबू निभाए के ही पड़ला। और यही से कहल जाला कि बेटी बेटा का ब्याह ऐसे घर में करा जहाँ देखा सब लोग मतलब संयुक्त परिवार हो, सब जने आपस में मिल के सहयोग करके काम करे। कहीं कहीं देखे के मिलल हो कि शादी ब्याह कर देवल जाला जहाँ बेटी का चाहे बेटा का, ओकरे बाद जो घर परिवार का समस्या सुन के ना एकदम सामान्य व्यक्ति भी देखा परेशान हो जाला।
1: है ना गुलाबो बहन, देखा यही तो जीवन हो, उतार चढ़ाव सबके जीवन में लगल रहला।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन वह बाकी हम लोगन के सचेत रहे के बा, कदम कदम फूक के चले के बा, और जो हमार नई जानकारी बा, जो सोच बा, जो विचार बा, ओकरे साथे हम लोगन के आगे बढ़े के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखे अब तो इतना समस्या गंगा बहन हम लोगन के देखे के मिलत बा शादी ब्याह के समय कि अब नई नई बीमारी, नया नया तरीका, नया नया समस्या कि अब लगत बा ना कि अब हम लोगन के जैसे अपने बचवा बच्चन का ब्याह अगर हम लोगन करी तो ओकरे पहले अपने जैसे कि अब तो कौन बीमारी कब कहाँ से निकल के सामने आ जाए गंगा बहन पता नहीं चलत। लेकिन हमरे कहने के अनुसार चाहे अब जो समय का मांग बा, अगर अपने बचपन का हम लोगन शादी ब्याह करते हैं तो शादी के पहले अपने बचपन का रक्त का जांच हम लोगन के जरूर करा लेवे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल गुलाबो बहन, बहुत बढ़िया बात कहलू है कि और आजकल देखें अपन जो नया नया बचवा लोगन, हम लोग के समय के तो बात छोड़ दें, जो अपन नया आजकल के बचवा हुआ वो लोग भी इच्छुक रहना कि भाई जो अपन जांच पड़ताल बा ओके पहले ही कर लेवल जाए ताकि जो शादी के सुखमय जीवन बा ओके अच्छे से बितावल जा सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जांच करे से ना जाना लो बहुत फायदा होला। कहे की देखा बेटा बेटी हमारे स्वस्थ हवा कि नहीं हवा, उनकर का समस्या बा, कौन परेशानी बा, उनके देखा पहले विवाह के पहले ही पता चल जाला। और रही बात अगर पतो हम लोगन घर में लियावत है तो हम लोगन के भी जानकारी रहा कि हमारे पतो देखा पूर्णतः स्वस्थ है, कोनो परेशानी नहीं बा। अगर देखा कोनो परेशानी बा तो समय रहते ओकर इलाज भी हो जाला। अगर बेटी हम अपने दूसरे के घर में देते हैं तो वह चीज अपने बेटी पर भी लागू होला कि अगर कोनो परेशानी है तो समय से पहले देखा ओकर इलाज संभव हो जाला, इलाज करके ओके पूर्णतः स्वस्थ हम लोगन कर सकीला। तो समय रहते देखा कहल जाला कि समय रहते कोनो भी चीज का अगर इलाज गंगा बहन हो जाए ना तो समझ लें कि वो बहुत बढ़िया बात बा। यही से कहल जाला जागरूक हुए की जरूरत बा। और जागरूक हुए खातिर अपने पंचायती में जब हम लोगों जुटल जाला ना तो जानकारी के माध्यम से अपने बातचीत करल जाला। और जानकारी देखा कितना बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हो गए ना, वैज्ञानिक हो गए ना, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी हो रहा। तो आज देखा हम लोगों ने एक आनुवांशिक रक्त विकार थैलेसीमिया ये डॉक्टर सुनील गोर जी हम जिनसे अपन जलवी भौजी के बातचीत बा, मुलाकात बा, का बतिया और का उस जानकारी देते हैं। अगर आप कहें तो उनका जानकारी
1: एकदम बिना देर कहिए।
0: चले
2: आमतौर पर हम यह जानते हैं कि थैलेसीमिया रक्त की कमी जैसी समस्या है, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र से डॉक्टर सुनील गौर साहब हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब, आज हम एक विशेष जानकारी चाहते हैं रक्त संबंधी।
3: जी जी।
2: तो सबसे पहले हम और हमारे श्रोता यह जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया है क्या, यह सामान्य एनीमिया से भिन्न क्यों है, कैसे है?
3: देखिए ये थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक मतलब कि माँ बाप से ही मिलती है आमतौर पे,
2: वंशानुगत।
3: हाँ वंशानुगत, हिंदी में वंशानुगत बोलते हैं। यह एक जेनेटिक बीमारी है, इससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन बना होता है वो प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में वो सही से नहीं बन पाती है, जिससे जिसके कारण हमारी आरबीसी सेल्स जो है वो जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं। और शरीर में खून की कमी हो जाती है। और ये सामान्य एनीमिया से इस तरह से अंतर हो जाता है इसमें है कि जो सामान्य एनीमिया होती है उसमें आयरन की कमी से या खान पान पोषण की कमी से होता है, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें वंशानुगत होता है, जो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है तो वंशानुगत होता है।
2: यह रक्त में बनने वाला जो आरबीसी होता है वो नहीं कायदे से बनता है, स्वस्थ नहीं रहता है।
3: जी जी जी, तो ये जो थैलेसीमिया होती है वो दो प्रकार की होती है, तो इसे बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, आप भी बहुत कम नाम सुने होंगे अल्फा थैलेसीमिया का। और बीटा थैलेसीमिया जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये तीन तरीके की होती है, एक मेजर होती है, माइनर होती है, इंटरमीडिएट होती है। तो जो माइनर वाली होती है उसमें बहुत ज्यादा खून चढ़ाने का आवश्यकता नहीं होती है, जो मेजर और इंटरमीडिएट होती हैं इनमें जरूरत ज्यादा होती है।
2: जी जी जी, तो ये खून चढ़ा के व्यक्ति के शरीर में रक्त का अनुपात बनाए रखना उद्देश्य होता है।
3: जी जी जी,
4: जैसा कि आपने बताया कि थैलेसीमिया अब प्रायः वंशानुगत होता है।
3: जी,
4: तो क्या किसी माता पिता के दो चार बच्चे हैं, एक से अधिक बच्चे हैं, तो क्या सभी थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं?
3: जी हाँ, वंशानुगत होना मतलब कि सब बच्चों में जाना ही जाना होता है। तो उसमें हमने बताया कि तीन
4: कैटेगरी होती
3: है। हाँ, तो जो माइनर वाला होता है उसमें इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, और जो मेजर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई देता है, और जो इंटरमीडिएट होते हैं उन्हें तो लगभग साल में दो साल में आवश्यकता पड़ती है ब्लड की।
4: जी जी जी, तो जो आपने मेजर थैलेसीमिया की बात कही,
3: जी,
4: इसको
3: जी,
4: समझने के लिए माता पिता कौन से लक्षण देखें तो तुरंत चिकित्सालय जाएं, जांच का उपचार करवाएं?
3: बच्चे में थैलेसीमिया मेजर के लक्षण आमतौर पे जन्म के 6 महीने से 1 साल के भीतर मालूम पड़ जाते हैं, जो मेजर होते हैं। माइनर और इंटरमीडिएट तो बहुत ही एडल्ट में आते हैं।
4: जी जी जी,
3: तो जैसे कि क्या क्या अंतर दिखने लगेंगे बच्चों में, जो बच्चों की त्वचा है और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है, और बहुत ज्यादा बच्चों में कमजोरी आ जाती है, थकान आ जाती है, बच्चों का विकास रुक जाना या बहुत धीमा हो जाना, ये भी उसी की श्रेणी में आता है। और जो बच्चों की हड्डियां होती हैं, जो चेहरे की हड्डियां, उनकी बनावट जैसा कुछ दूसरे टाइप की होने लगती है, जैसे नाक चपटा होना, जो चेहरा है उनकी हड्डियों पर फैल जाना,
4: जी,
3: और पेशाब का रंग जो है काफी पीला होने लगता है इसमें।
4: जी जी जी, अब यदि
3: जी
4: यदि कोई अभिभावक माइनर रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित है किंतु उसके बच्चे में मेजर थैलेसीमिया दिख रहा है और इसकी शिनाख्त भी हो गई, तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इसका इलाज संभव है कि नहीं, सबसे पहले तो यही प्रश्न होता है।
3: जी जरूर, हर एक बीमारी का सब लोग यही सोचते हैं कि इसका इलाज है कि नहीं है, ये तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है। जी जी, अब जो थैलेसीमिया का इलाज संभव है, एक बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए आसान इलाज है, जैसे जो सामान्य इलाज हम लोग करते हैं, जैसे थैलेसीमिया मेजर आ गया तो इसमें नियमित अंतराल पर ब्लड चढ़ा देते हैं, आते हैं, खून की कमी रहती है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इसमें हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होती है वो चेंज हो जाती है, तो आरबीसी हमारी बार बार टूट जाती है, तो आरबीसी बार बार टूटने से खून की कमी हो जाती है। तो जब मेजर होती है तो इसमें नियमित अंतराल पे ब्लड चढ़ा जाता है इनको है, लेकिन इलाज इसका जो मेन इलाज है, जो एकमात्र इलाज है, अस्थायी इलाज है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, ये एक जटिल और काफी महंगा इलाज है, तो आम लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
4: बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो बात आती है उसमें भी ऐसा सुनने में आता है कि कोई अपना सगा हो, अपना हो, उसी से होता है?
3: हाँ जी, इसमें तो जो ट्रांसप्लांट वाली चीजें होती हैं वो काफी क्लोजली मैच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई चीजें मैटर करती हैं, काफी ज्यादा चीजें, तो इसमें होता है कि रिजेक्शन ना हो पाए, तो काफी क्लोजली लोग होते हैं उन्हीं को लिया जाता है।
4: अब इलाज तो बीमारी के बाद आदमी ढूंढता ही है, और हमारे भारत में चिकित्सा विज्ञान ने कई उपलब्धियां हासिल करी हैं, पर यदि यह बात आती है कि माता पिता दोनों थैलेसीमिया से पीड़ित है तभी बच्चे को होता है, कि कोई एक भी अगर थैलेसीमिया से पीड़ित है तो भी संभावना रहती है?
3: माता पिता दोनों लोग अगर माइनर हैं
4: जी,
3: तो बच्चों में 25% चांस होता है मेजर होने का। जैसा मैंने पहले बोला कि अगर माइनर होता है तो उसे लाइफ में बहुत कम चांसेस होते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो पाए, और बहुत लोग को मालूम भी नहीं पड़ता है कि ऐसा कुछ है
4: जी।
3: तो अगर माता पिता को माइनर है तो बच्चे को मेजर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, या मम्मी और पिता में किसी एक लोग को, पेरेंट्स को किसी एक लोग को है तो दूसरे लोग को नहीं है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि मेजर होने के।
4: डॉक्टर साहब, इस तरह की बातचीत के बीच एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, शायद वो आपके लिए या हमारे श्रोताओं के लिए हास्यास्पद हो, किंतु हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए कि क्या बचाव के लिए विवाह से पूर्व भी कोई जांच होती है?
3: जी जी, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग बोलते हैं। ये तो आजकल बहुत मतलब मुझे समझ में आता है कि इसको तो शादी से पहले कराना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है कि शादी से पहले खून की जांचें। ये सबसे मतलब कि बहुत प्रभावी और जागरूकता वाला जो आपने क्वेश्चन कहा है
4: जी,
3: ये बहुत ही जागरूकता वाला क्वेश्चन ये है
4: जी,
3: कि शादी से पहले जांचें करवानी चाहिए। स्क्रीनिंग होती है इसमें, है इसमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि इसमें हमें मालूम पड़ जाता है कि थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है या नहीं है, तो इसकी जांच क्या नाम है कि करवा लेनी चाहिए शादी से पहले।
4: एक प्रश्न और था कि यदि कोई युवा या युवती विवाह से पूर्व बार बार एनीमिया के शिकार हो रहे हैं, रक्त की कमी है, या जैसा आपने बताया कि उनके अंदर इस तरह की कोई लक्षण दिख रहे हैं, तो उन्हें विवाह के लिए निर्णय लेना कितना सही है? क्या उन्हें विवाह करना चाहिए, क्योंकि फिर तो बच्चे ऐसे ही होंगे?
3: जी आपने एकदम सही, जैसे कि हमने भी पिछली बार बोला है कि मम्मी पापा को अगर माइनरी है
4: जी जी,
3: तो
4: जी
3: अगर माइनरी है तो बच्चे को 25% होने का।
4: अच्छा।
3: अगर माइनर है तो दोनों लोग अगर माइनर हैं तो 25% जो हमारी उनकी जो प्रजनी होती है उसमें 25% चांस होता है कि मेजर हो जाए। अगर मेजर हो जाएगा तो 1 से 1.5 साल में सिम्टम मालूम ही पड़ जाते हैं उसके, और जब सिम्टम मालूम पड़ जाते हैं तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा ब्लड फ्री दिया जाता है, कार्ड बन जाता है उनका है विद्या का, लेकिन बार बार ज्यादा ब्लड चढ़ाने से तो जैसा शरीर में आयरन लोड होने लगता है, तो उसके साइड इफेक्ट भी अलग होते हैं अपने हैं, और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना भी एक अपने आप में बहुत ही वो रिस्की है। तो देखिए उनको तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चे पैदाइश तो करनी होती है जब शादी कर रहे हैं, लेकिन ये होता है कि एक जैसा पॉसिबिलिटीज है बहुत ज्यादा होती है कि 25% मतलब आप समझ रहे हो कि हर चौथे बच्चे में एक को कन्फर्म होना।
4: ऐसे में तो एक बार हमें और हमारे तमाम अभिभावकों को यह सोचना चाहिए कि विवाह से पूर्व जो हम मैच मेकिंग मतलब कि कुंडली का मिलान करते हैं, उसके साथ साथ ब्लड रिपोर्ट भी एक बार देख लेनी चाहिए।
3: ना बहुत अच्छा आपने बोला है, मैं अपने अपने जो सुनने वाले हैं रेडियो पे उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कुंडली मिलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लड का भी मिलना बहुत जरूरी है, जैसा आपने बताया कि बहुत ही जरूरी है। ये एक ब्लड से एक बीमारियां नहीं, कई सारी बीमारियों के बारे में मालूम पड़ जाता है, तो इससे दोनों लोग काफी एक दूसरे के प्रति काफी वो बढ़ जाती है कि एक अच्छी भावना बढ़ जाती है कि हाँ हम लोग इससे इस बीमारी से नहीं है, इससे नहीं है, क्योंकि आजकल कई बीमारियां हैं जो ब्लड से रिलेटेड है।
4: जी बिल्कुल सही बात है, और बार बार अप्राकृतिक रूप से किसी बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति का खून चढ़ाना यह अपने में स्वयं एक रोग को जन्म देने जैसा है, क्योंकि आज के समय में रक्त लेने और देने में भी कई बीमारियों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, आपने थैलेसीमिया की जो जानकारी दी उससे तो हमारे श्रोता जागरूक होंगे ही, साथ ही एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि ऐसी बीमारियों से बचने के लिए विवाह से पूर्व एक खुली मानसिकता के साथ वर वधु का रक्त जांच आवश्यक हो। तो हमारे युवाओं को, युवतियों को, विशेषकर उनके अभिभावकों को कि ऐसी मांग होने पर कहीं अन्यथा न ले, किसी प्रकार से यह गैर तर्क संगत नहीं है, आपके क्या संदेश है?
3: अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे प्रभावी तरीका है जागरूकता और जांच है। विवाह से पहले, प्रेगनेंसी से पहले स्क्रीनिंग करना बहुत ही जरूरी है, इसे समझ लीजिए अनिवार्य है। तो इससे काफी अच्छा एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा हमारे देश के नौजवानों को, बच्चों को, कि जब बेटा या किसी कुछ भी कोई अगर थैलेसीमिया पॉजिटिव हो जाता है तो वो उसको बीमारी को लेके काफी परेशान हो जाता है, अपने सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ उसी के इलाज में लग जाता है। तो अगर ये सब पहले से स्क्रीनिंग हो जाएगी तो काफी अच्छा रहेगा आगे फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के लिए, देश के फ्यूचर के लिए।
4: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी और बहुत ही जागरूक कराने वाली बातचीत रही और आपने रेडियो के लिए इतना समय दिया। हमारे श्रोता थैलेसीमिया को लेके अपनी सोच बदलेंगे और विवाह से पूर्व ऐसे निर्णय लेने में इस चिकित्सा विधि का जरूर प्रयोग करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी धन्यवाद आप लोग का भी।
5: किधर है?
6: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट,
5: ये तो झटपट काम है।
6: कैसे?
5: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
6: और बाकी चेंजेस?
5: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
6: RBI कहता है
7: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: गंगा बहन, गुलाबो भाई, कितना बढ़िया जानकारी रहा हो। एक आनुवंशिक रक्त विकार थैलेसीमिया एकदम फरिया फरिया के जानकारी ले लेना अपन जलेबी भौजी और देवल जाए, इनके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के कि इतना बढ़िया एकदम समझा समझा के अपन जानकारी दे लेना।
8: बिल्कुल,
0: के तरीका से हम लोगों के का करे के चाहिए और अपने बच्चों का अपने बच्चियों का के तरीका से हम लोगों के
8: ध्यान रखे के बाद समय के साथ कैसे चले के बाद।
0: बिल्कुल, और रक्त का संबंधित जौन भी समस्या बा ओके हम लोगों के समझौलो ना, तो डॉक्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ऐसे नहीं, हम तो कहते हैं एक मन फिर के द्वारा अगर हो धन्यवाद तो का पूछे के हाथ श्याम देव व संघाती भी हम लोगों के गाँव देशभक्ति गीत बा
8: ठीक
0: कहा कहते हैं सुनल जाए।
8: बिल्कुल
0: चलो।

1回。

0: गंगा बहन
1: गुलाबो बहन,
0: देखा है इतना बढ़िया अपन मन फेर रहा देशभक्ति गीत सुन के, तो मन एकदम फरीच हो गयी
1: बिल्कुल।
0: अब देखा मन फरीच हो गये ना, तो अब तन भी फरीच एकदम स्वस्थ रखे। कभी कुछ अपने पंच भय लोगों से बातचीत कर लेवल जाए
1: हाँ।
0: कि पंचायती जब जुटा ला, देखा सब पंच भय लोग इकट्ठा हुआ
1: हाँ।
0: तो हम तो सबसे पहले ये सबसे पहले नहीं हो रहा करब की देखा पंच भय लोगन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, साथ में जो अपन बहन लोगन है ये लोगन भी अपन स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखे। काहे की देखा अगर स्वास्थ्य बढ़िया रही तब देखा घरे का कोनो भी काम सफलता पूर्वक आगे बढ़ी, उनका बढ़ोतरी हुई, उनका बच्चा लोगन आगे बढ़िए। और देखा बहुत बहन लोगन का कहानगी होला कि हम लोगन समय से खा लेला
1: हाँ।
0: पी लेला और अपने मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखे ले ए तरीका से, लेकिन ए तरीका से बिल्कुल नहीं। सही समय पे आप उठे, सही तरीका से भोजन करें, हरी साग सब्जी का भरपूर प्रयोग करें,
1: बिल्कुल
0: पानी
1: बिल्कुल।
0: वाले चीज का गर्मी में प्रयोग करें, जैसे खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज नींबू का पानी
1: हाँ, हाँ,
0: और जैसे अपन हो जाला ना कबो कबो गन्ना का रस भी
1: हाँ,
0: पी
1: हाँ,
0: लेवाला, कभी बेल का शरबत पीला, ए तरीका से शरीर में जो पानी की कमी बा ओके पूरा करें। साथ में योगा का पूर्ण अपन अभ्यास करें, योगा करें तब आपका शरीर जाके स्वस्थ रहे।
1: एकदम गुलाबो बहन। और अपन कुछ बहन लोगन देखे अपन स्वास्थ्य का ध्यान ना देनी, लेकिन आप जितना अच्छे से बताइनी अब जरूर स्वास्थ्य का ध्यान दी है।
0: बिल्कुल, तो आप तो कहब ना कि अपने यही बात बत कही के संगे अपन पंचायती भी यही समेटे का हो रहा बकत, तो चल जाए तो सब
1: सब पंचन के राम राम, राम।

0: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसानवाड़ी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भैया बोला जय जवान जय किसान।
1: गंगा बहिन
0: गुलाबो बहिन
1: और बतावे का हाल चाल बा। देख बसुरी बज गई बा हाँ। और देखा अपन बैठकी समय से लग भी गई
0: हाँ।
1: और देखा अपने बैठकी में संगीत के धुन सुनाई दिला ना तो मनोरंजन होला। एकरे साथे साथे ज्ञान के भी देखा भरपूर संगम होखेला और बुजुर्ग और जवान सब लोग एकजुट होके कार्यक्रम का आनंद ले वालन।
0: बिल्कुल गुलाबो बहिन देखा कई लोग अपन जो सवाल पूछ के अपन जिज्ञासा भी शांत कर लेना और बांसुरी के जो सुर माहौल के और भी मधुर बना देला।
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही देखा अपन बैठकी कई साल से गांव के जो संस्कृति बा उके मजबूत बनावत बा तो सोनभद्र के पहाड़ी और जंगल वाला जो भौगोलिक इलाका खेती खातिर हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहल।
1: बिल्कुल गंगा बहिन और ये देखा एजा के मौसम कब बदल जाए हो एकर सही अंदाजा लगावल बड़ा कठिन हो जाला।
0: बिल्कुल
1: आजकल देखा दिन में तेज धूप गर्मी से तापमान एक जो 41 डिग्री सेल्सियस तक जोन पहुंच जात बा और राते का तापमान देखा है 24 डिग्री सेल्सियस रहे से मौसम में अचानक देखा बदलाव भी महसूस हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल गुलाबो बहन और देखा कभो कभो तो तेज आंधी कभो तेज पानी बरसे लगा तो कभी बादल छा जाता।
1: बिल्कुल
0: तो जोन अपन फसल बहुत प्रभावित हो जात बा और तेज हवा से देखे गेहूं भैल मक्का सब्जी वाली जो फसल बा गिर के खराब हो जात बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और असमय बरखा से तो खेत में पानी भर जाता और जोन जोन पौधा हो वो सब सड़ जा रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल गंगा बहन और ए बदलत देखा मौसम में किसान भाई लोगों काफी चिंता में भी दिखाई दे रहा हो
0: हाँ।
1: और देखा गर्मी बढ़े से खेत का जो नमी तेजी से सूख जात बा सिंचाई के अपन जो जरूरत बा वो बढ़ जात बा
0: हाँ।
1: और देखा कई जगह देखा पानी के कमी से किसानों खातिर सबसे बड़ा समस्या बन गए हो।
0: बिल्कुल गुलाबो बहन जो कबो कबो देखा तेज धूप के कारण जो सब्जी बा जो अपन दलहनी फसल के उत्पादन बा वो कम होवे लगेला।
1: बिल्कुल
0: और आंधी पानी से जो फलदार पेड़ हुआ वो भारी नुकसान देखे के मिलत बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मौसम के जो आसमान चाल से जो कीट रोग के प्रकोप हो ना वो भी तेजी से बढ़ रहा बा।
1: बिल्कुल और देखा एकरे चलते किसानन के खेती में जो लागत अधिका से आमदनी
0: हाँ।
1: कम हो जात बा
0: हाँ।
1: और देखा अगर मौसम के जानकारी सही समय पे मिल जाना तो नुकसान कुछ हद तक कम हो सकेला।
0: बिल्कुल
1: ये खातिर देखा किसानन के मौसम आधारित खेती अपनावे की जरूरत
0: है। हाँ हाँ गुलाबो बहन और कृषि विभाग के द्वारा जोन सलाह बाऊ किसान भाई लोग खातिर लाभदायक हो सकेला तो जोन सावधानी और वैज्ञानिक तरीका अपना के खेती के नुकसान कम करल जा सकेला ओके जरूर अपन किसान भैया लोग अपनावे और सोनभद्र के जोन किसान अपन मेहनती हुवन वो जोन चुनौती बा हो गुलाबो बहन हर तरीके से अपन सामना करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूरत बात समय के अनुसार खेती के तरीका बदले के और जागरूक बने के मौसम चाहे देखा जितना भी कठिन हो के गंगा बहिन
0: हाँ।
1: सही योजना से खेती सफल बन सकेला।
0: बिल्कुल
1: समूह में खेती करे से ना जानकारी साझा करे से भी फायदा हो सकेला।
0: बिल्कुल बिल्कुल और जो देखा अपन सरकारी योजना बा हो गुलाबो बहिन कृषि वैज्ञानिकन का जो सलाह बा
1: बिल्कुल
0: किसानन तक जब पहुँचेला ना तो अपने आप किसान भैया लोग अपन तैयार रहना और जो नई तकनीक आ गई बा हो मौसम जानकारी के तो उसे उत्पादन में भी बढ़ोतरी संभव बा।
1: बिल्कुल
0: और जो खेती के सुरक्षित बना के किसान भाई अपन आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रहा हूँ।
1: एकदम गंगा बहिन सचेत किसान ही बदलत मौसम का सफल खेती के मिसाल बन सकेलन हो और आज के समय में देखा किसान भाई लोग खातिर आमदनी बढ़ावल सबसे जरूरी विषय बन गई बा और बदलत मौसम और प्रकृति आपदा खेती पर लगातार असर डाल रहा बा।
0: हाँ हाँ और देखे यही स्थिति में केवल जो परंपरागत खेती पर निर्भर रहना हो अपने किसान भाइयों के लिए बहुत मुश्किल हो गई बा।
1: बिल्कुल
0: और अपन किसान भाइयों के अब जो हो खेती के साथ जो अतिरिक्त आय के साधन बा ओके खोजे के जरूरत बा। जो सब्जी भैल फल फूल दलहनी खेती से अधिक मुनाफा भी कमावल जा सकेला।
1: बिल्कुल गंगा बहिन और देखे पशुपालन बकरी पालन मुर्गी पालन से रोजाना आमदनी बढ़ सकेला हो और कम लागत अधिक उत्पादन वाली तकनीकी अपनावले से समय के मांग बा और देखा जागरूक किसान नई सोच से आपन भविष्य मजबूत भी बना सकेलन।
0: बिल्कुल और जो जैसे सोनभद्र जैसे जो क्षेत्र बा हो गुलाबो बहिन यहाँ जल संरक्षण बहुत जरूरी मानल जात बा।
1: बिल्कुल
0: अगर किसान बरखा के सहारे रही है तो जो पानी सहेज लें सूखा में भी खेती आसानी से हो सकेला और जो ड्रिप सिंचाई भा या स्क्रिंपलर तकनीक से जो पानी के बचत हो खेला देखा इतना कठिन शब्द हो जाला कभो कभो कि मुंह में जिभिये ऐठा जाला पहले जो ना फसल के देखे उत्पादन बढ़ेला ना ओकर खर्चा भी कम हो जाला।
1: एकदम गंगा बहन आपकर कहनगी बिल्कुल सही बा। और देखा ये तरीका से जैविक खाद के इस्तेमाल से माटी स्वस्थ रहेला और जोन घाटक हाँ और फसल चक्र अपनावे से खेत में जो उर्वरकता जो है बरकरार रहेला।
0: हाँ।
1: और देखा मौसम के अनुसार खेती करे वाला किसान कम नुकसान उठावेला। ये तरीका से धीरे धीरे देखा किसान के आय में बढ़ोतरी भी होए लगा ला।
0: हाँ,
1: और
0: हाँ।
1: यही तरीका से आज अपने देखा पंचायती में अपने कार्यक्रम में जब हम लोगों जुटल गए बा।
0: हाँ।
1: तो देखा आज अपने जानकारी के क्रम भी हम लोगों आगे बढ़ावल जाए। हम लोग बात बात कही तो और कर ले जाये, लेकिन अपने कार्यक्रम में हम लोग जब जुटल गए तो किसान भाई लोगों के जानकारी देवल जाए। आज देखा जानकारी के क्रम में उर्वरकों का संतुलित उपयोग शुद्ध आय में वृद्धि।
0: हाँ।
1: एपे जो डॉक्टर संजीत कुमार हवा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष व केवीके सुहाब बलिया का उनसे देखा अपन सुनील कुमार तिवारी भैया के भेंट मुलाकात भेल बा।
0: हाँ।
1: का बात भेल बा का जानकारी देले हमें तो हम तो कहते ने बिना देर के लिए चले इनकर जानकारी सुनल जाए।
0: चल
2: किसान भाई लोग देखा हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और अगर खेती बाड़ी करत है हम लोगन थोड़ा सा कुछ बात ऐसा है जौन इनका ध्यान हम लोगन के देवे के चाहिए। ध्यान के बात कर जाए तो जौन खाद बा या उर्वरक बा ओकर संतुलित उपयोग कई का हम लोगन कैसे अपन आमदनी बढ़ा सकीला एकरे बारे में जरूर हम लोगन के सोचे के चाहिए। तो हम लोग जरूर सोची देखें आज हमार संपर्क हो गल बा डॉक्टर संजीत कुमार साहब से जौन की वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सोहाव बलिया में हम और आज हम लोगन आपसे ही जानब कि कैसे खाद और उर्वरक का संतुलित उपयोग कई का हम लोगन अपने आमदनी के बढ़ा सकीला। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: जी नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब देखें आज आपसे हमार संपर्क हो गल बा और किसान भाई लोग अंधाधुंध खाद और उर्वरक का प्रयोग अपने खेत में करत हुआ लेकिन आज हम आपसे जानल चाहत कि खाद और उर्वरक का संतुलित उपयोग का जो आवश्यकता बा वो काहे बदे पड़ा।
3: जी सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीत कुमार जैसा कि तिवारी जी ने बताया मैं डॉक्टर संजीत कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सोहाव बलिया जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय
2: जी
3: कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित किया जा रहा है
2: जी
3: अपनी तरफ से और अपने केंद्र की तरफ से विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी सुनने वाले किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि खाद एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी
2: जी
3: जैसे देश आजाद हुआ उस समय हमारा देश खाद्यान्न संकट में था
2: जी
3: और फिर कृषि का विकास हुआ और कृषि के विकास के साथ साथ रसायनों का भी विकास हुआ तरह तरह के खाद उर्वरक
2: जी
3: और इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड ये बनाए गए
2: जी जी
3: और किसानों ने उसका भरपूर उपयोग भी किया और हमारा जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन भी बढ़ा और भारत आत्मनिर्भर भी बना
2: जी
3: खाद्यान्न के क्षेत्र में
2: जी
3: ऐसे ही ये दौर चलता रहा और फिर किसान ने देखा देखी असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना शुरू कर दिया
2: जी
3: और मिट्टी वगैरह की भी जांच नहीं कराई देखा देखी जैसे पड़ोसी एक बैग यूरिया का एक एकड़ में डाल रहा है तो दूसरे ने डेढ़ बैग या दो बैग डालना शुरू कर दिया
2: जी
3: इसी तरह से रसायनों का भी अंधाधुंध उपयोग किया जिससे क्या हुआ कि जो भूमि की उर्वरता है उसकी फर्टिलिटी है उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला
2: जी
3: और उत्पादकता भी घट गई। ऐसे ही जो जमीन के अंदर पोषक तत्व मौजूद हैं वो भी अनुपलब्धता के स्तर पर पहुंच गए और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी देखी जा रही है लगभग हर जनपदों में।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब और जो अपन किसान भाई लोग बाया उनके ये बतावे कि जौन मिट्टी का जांच बा का अगर वो मिट्टी का जांच करावत ना तो ऐसे उनके लाभ मिल सकला।
3: जी जी जी तिवारी जी आपने बहुत अच्छा ही बात की कि मिट्टी की जांच करा के क्या लाभ मिल सकता है। मिट्टी की जांच इसी प्रकार से होती है जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए अपने खून का या बॉडी का चेकअप कराते हैं डॉक्टर से, ऐसे ही मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को जानने के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। ये कम से कम 2-3 साल के अंतराल पर कराते रहना चाहिए। इससे पता लगता है कि जमीन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उनकी कितनी मात्रा है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसी हिसाब से फिर उसमें रिकमेंडेशन दिया जाता है कि किसान इन इन उर्वरकों का इतनी इतनी मात्रा में उपयोग करें। तो मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है और ये सरकार द्वारा भी अभियान चल रहा है
2: जी।
3: तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेत का नमूना आप लेकर जरूर जो स्थानीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है लगभग हर जनपद में है
2: जी जी,
3: वहाँ पर उसको भेज दें, नमूने को सैंपल को जमा कर दें, तो ये मिट्टी की जांच जरूर कराएं। इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा हमारी जमीन में उपलब्ध है, तो उसी हिसाब से फिर खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे।
2: हम लोगन ये भी जानल चाहब कि जौन उर्वरक का संतुलित उपयोग बा वो अपन किसान भाई लोग कौने प्रकार से करें।
3: जहाँ पर संतुलित उर्वरकों के उपयोग की बात करते हैं तिवारी जी, वहाँ पर इसमें जो है जो प्राकृतिक खाद है या जैविक खाद जिसको कहते हैं
2: जी जी,
3: उसको भी ऐड करना चाहिए किसान को। कम से कम 50% नाइट्रोजन की मात्रा जो है कार्बनिक खादों से या ऑर्गेनिक जो मैन्यूर है उनसे करनी चाहिए। जैसे किसान भाई अगर उनके पास पशु है तो अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद 1 हेक्टर में 10 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से करें, इससे लगभग जो है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर मिल जाएगी। साथ ही साथ उसमें 25 किलोग्राम फॉस्फोरस भी मिलेगी
2: जी।
3: तो बाकी की जो मात्रा बची हुई है वो DAP, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट या पोटास की सहायता से आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ मिट्टी की जांच तो बताया ही है के आधार पर जैसे उर्वरता का स्तर पता चलता है, अगर किसी खेत में जिंक की कमी है तो वहाँ पर जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर देना चाहिए
2: जी।
3: और जहाँ पर सल्फर की कमी है तो सल्फर भी उसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। जो वास्तविक रेशो वैज्ञानिकों ने बनाया है वो 4-2-1 का है। अगर किसान भाई किसी खेत में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल रहा है तो कम से कम वहाँ पर 20 किलोग्राम फॉस्फोरस होना चाहिए उसमें मिश्रण में
2: जी,
3: और 10 किलोग्राम पोटास होना चाहिए। तो 4-2-1 का रेशो बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से जो पोषक तत्व है वो जो भी फसल हम लोग उगा रहे हैं उसमें उनको मिलते रहेंगे फसल को, और फसल की बढ़वार अच्छी होगी, कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। और जब फसल स्वस्थ होगी तो किसान की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी, उत्पादन भी उसका बढ़ेगा, साथ ही साथ लागत भी घटेगी।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब जवान खाद और उर्वरक के संतुलित उपयोग हम लोगन करत है जा, तो इनमें जैविक खादन का भूमिका का हो सकल है?
3: जैविक खादों की भूमिका बहुत बड़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है त्रिपाठी जी
2: जी।
3: जैविक खाद के अंदर जो है लगभग सारे पोषक तत्व 16 तो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं
2: जी,
3: लेकिन इसके अलावा भी कुछ पोषक तत्व हैं अगर वो सभी जैविक खादों में उपलब्ध होते हैं
2: जी।
3: जैविक खाद की बात करें तो जैसे मैंने बताया सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या मुर्गी की खाद
2: जी
3: या मछली की खाद, इनका इस्तेमाल किसान जरूर करें। और उसके साथ में लगभग 50% जो है नाइट्रोजन
2: जी
3: वो जैविक खादों से या कार्बनिक खादों से पूर्ति करें, साथ ही साथ जो बची हुई मात्रा है वो आप लोग रासायनिक उर्वरकों से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी गेहूं की कटाई हो चुकी है या सरसों की भी कटाई हो चुकी है, जो भी हमारी फसलें थी रबी वाली सारी कट चुकी हैं और खेत खाली हैं, तो जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन है वहां पर किसान भाई ढैंचा की बुआई कर सकते हैं और ये मात्र 45 दिन में तैयार हो जाती है पलटने के लिए। और इसमें जो हरी खाद है ढैंचे की
2: जी,
3: लगभग 40 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर जमीन में लगभग 45 दिन में एकत्रित हो जाती है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं किसान भाई के जो भी दलहनी फसल है जैसे ढैंचा भी दलहन वर्ग में आता है, तो इसमें राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं इसकी जड़ों में
2: जी।
3: वो ढैंचा की पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बनाकर रहते हैं और वातावरण की जो नाइट्रोजन लगभग 78% वातावरण में घूम रही है हवा में
2: जी,
3: उसको वो इकट्ठा करते रहते हैं जमीन में, ठीक है। और इस प्रकार से जैसे 40 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन मात्र 45 दिन में इकट्ठी हो सकती है, साथ ही साथ अन्य पोषक तत्व भी उसमें ऐड होंगे
2: जी,
3: क्योंकि लगभग सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जितने भी ये प्राकृतिक खाद है
2: जी जी।
3: और इसके बाद जैसे ही फसल आपकी लगभग 3.5-4 फीट की हो जाए, वो 45 दिन में इतनी हो जाती है
2: जी,
3: तो उसकी पलटाई कर दें और पलटाई करके उसमें पानी अच्छे से लगा दें और सिर्फ एक सप्ताह छोड़ दें, उसके बाद धान की रोपाई उसमें कर सकते हैं
2: जी।
3: तो इससे बहुत अच्छी फसल आपकी होगी और उर्वरकों की भी बचत होगी यहाँ पर
2: जी।
3: 50% सीधा उर्वरक बचा सकते हैं अगर ढैंचे की खाद का इस्तेमाल हरी खाद का कर रहे हैं किसान भाई।
2: डॉक्टर साहब, उर्वरक का संतुलित उपयोग में जौन अपन फसल चक्र बा एकर का भूमिका हो सकल है?
3: हाँ हाँ, फसल चक्र का भी बड़ा महत्व है पोषक तत्व प्रबंधन में
2: जी
3: और संतुलित उर्वरकों के उपयोग में। फसल चक्र में जैसे दलहनी फसल या अनाज वाली फसलें, नॉन लेग्यूम क्रॉप, दलहनी फसल अगर हमने उगाई है पहले, कोशिश करें कि अगली जो फसल है वो दलहन वर्ग से होनी चाहिए। और दलहन वर्ग आप जानते ही हैं, दलहन वर्ग में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है उनकी जड़ों में और वो वातावरण की नाइट्रोजन को जमीन के अंदर इकट्ठा करता रहता है। साथ ही साथ जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती
2: जी,
3: मात्र 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर ही इस्तेमाल करना पड़ता है स्टार्टर डोज के रूप में, जब तक हमारे पौधे का विकास होता है
2: जी।
3: उसके बाद फिर जड़ों में ग्रंथियां बननी शुरू हो जाती हैं, वो अपना भरण पोषण तो करती ही है वो
2: जी,
3: फसलें दलहनी, साथ ही साथ आगे आने वाली जो फसल है उसके लिए भी वहाँ पर अच्छी मात्रा में लगभग 40 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर जमीन में ऐड कर देती है
2: जी।
3: तो किसान भाइयों से मेरा यही अपील है कि आप फसल चक्र को अपनाएं और उसमें दलहनी फसल जरूर ऐड करें।
2: बिल्कुल,
3: जैसे अभी सीजन आने वाला है जहाँ पर जल भराव की समस्या नहीं है वहाँ पर किसान भाई अरहर की खेती कर सकते हैं और सभी जनपदों में अरहर की खेती होती है
2: जी।
3: तो अरहर की खेती भी किसान लोग कर सकते हैं आने वाले सीजन में, या दूसरी फसलें हैं जैसे उड़द है या मूंग है या लोबिया है या फिर बोड़ा है, इसको भी बुआई करके आप लाभ उठा सकते हो।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया जानकारी दिलेन, ये जानकारी से जरूर अपन किसान भाई लोग लाभ उठे हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी। धन्यवाद।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
5: पर हम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: गंगा बहन,
7: गुलाबो बहन,
6: कितना बढ़िया जानकारी देत रहे हैं डॉक्टर संजीत कुमार जी, जवन की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष केवीके सुहा बलिया से रलन है। और उर्वरकों का संतुलित उपयोग के तरीका से करे के चाहे, और इतना फरिया फरिया के जानकारी दिलन है उनके, देवल जाए बहुत बहुत धन्यवाद।
7: हाँ।
6: और देखा, धन्यवाद के साथ साथ जब भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में जुटी ला,
7: हाँ हाँ।
6: तो देखा कुछ न कुछ ऐसा जानकारी होला, कुछ अपन बाजार भाव भी होला,
7: हाँ।
6: अपने कहीं न कहीं मंडी के बाजार भाव होला, कहीं की जानकारी के माध्यम से उनके पता चला ला कि मधुपुर का बा, कि रावर्सगंज में का बाजार भाव चलत बा, कि घुरावल में का बाजार भाव चलत बा, कि दुद्धी में का चलत बा। तो ऐसे में देखा आज हमारे हाथ में पाती लगल है पुनवासी चौहान भैया के भेजल पाती,
7: हाँ।
6: तो अगर आप कहें तो अपने किसान भैया लोगों के बांच के बता दें।
7: बिल्कुल गुलाबो बहन, फरिया के बतावा
6: एकदम। देखा है लाल वाला जो आलू है गंगा बहन, 1000 रुपया प्रति कुंतल है,
7: हाँ।
6: सफेद वाला आलू देखे 800 रुपए प्रति कुंतल है,
7: हाँ।
6: प्याज देखे 1300 रुपए प्रति कुंतल, टमाटर 250, बोड़ा देखे 1800 है,
7: हाँ।
6: कोहड़ा 200 है, लंबा वाला बैगन देखे 1200 है,
7: हाँ।
6: गोल बैगन 2500 रुपए प्रति कुंतल, परवल देखे 6000 रुपए प्रति कुंतल,
7: हाँ।
6: लौकी 500 है, करेला 1500 रुपया प्रति कुंतल, भिंडी 800 है,
7: हाँ।
6: और देखे नेनुआ 300 है, कुनरू 2000 है प्रति कुंतल,
7: हाँ।
6: मूली देखे 1000 है, हरी मिर्च देखे 5000 है,
7: अच्छा।
6: और फूल गोभी सैकड़ा में बा 1500 रुपए प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी देखे 2000 रुपए प्रति सैकड़ा, और देखे जो लहसुन है वो 7000 रुपया प्रति कुंतल है, धनिया 4000 रुपए प्रति कुंतल है, पुदीना,
7: अच्छा।
6: 3000 बा,
7: हाँ।
6: कहे देखा गर्मी में पुदीना का सेवन बहुत ज्यादा होला,
7: बिल्कुल।
6: और कहे कि पुदीना ऐसा चीज बा जो पेट में ठंडा प्रदान करला, ठंडा रखला, ऐसे
7: हाँ।
6: अगर कोनो बर बीमारी होला तो अगर पुदीना का सेवन करे तो बड़ी आराम मिलेला,
7: हाँ, हाँ।
6: और गर्मी में वैसे भी देखा चाहे छाछ बनावे, चाहे शरबत बनावे,
7: सब में पुदीना डाले,
6: चाहे आम को पना बनावे उसमें पुदीना जरूर होखला। और देखे भाव भी अच्छा बा 3000 रुपए प्रति कुंतल, अदरक देखे 8000 बा प्रति कुंतल, सूरन देखे 4000 रुपए प्रति कुंतल, कटहल 1000 बा,
7: अच्छा।
6: पालक देखे 1200 है, तरबूज 1300 रुपए प्रति कुंतल, खरबूज 1800 है,
7: अच्छा।
6: खीरा 1000 है, ककड़ी 1200 रुपए प्रति कुंतल, पपीता 1600 रुपए प्रति कुंतल, और नींबू देखे 400 रुपया प्रति सैकड़ा,
7: अच्छा।
6: ये रहा अपन पुनवासी चौहान भैया का भेजल मधुपुर से बाजार भाव,
7: हाँ।
6: और भैया के देवल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद के संगे हम तो कहब ना कि अपने कार्यक्रम को जो क्रम है एक ही थोड़ा आगे बढ़ावल जाए और मन फेर सुनल जाए,
7: चल।
6: तो मन फेर भी हम लोगों श्यामदेव और संघाती भैया लोगों के गावल किसानी गीत बा,
7: हाँ।
6: तो चले सुनल जाए,
7: चल।

0: सौ पोवा लगावा टमाटरावा हमारे साजाना जना मसूर सर सो पोवा लगावा टमाटरावा। अरे जे कर रोजा पढ़े ला बाजार हमारे साजाना जे कर रोजा पढ़े ला।
1: गंगा बहिन,
2: हाँ गुलाबो बहिन,
1: देखे हैं कितना बढ़िया अपन हम लोगन किसानी की सुनल गए।
2: हाँ।
1: देखा चले कभी समय हो रहा बा।
2: हाँ।
1: अब सब किसान भैया लोगन से ये कहल चाहब ना कि जेठ बैसाख के तपती धूप में खेत के तवा के जोन तरह तपला और पुराना किसान जोन कहलन।
2: हाँ।
1: कि जेठ का जुताई सोने का कमाई, ऐसे अपने खेत का जुताई जरूर करें।
2: हाँ।
1: और हम तो कहब कि चला चले कभी समय हो रहा बा।
2: हाँ।
1: तो चल जाए
2: चले
1: तो
2: भैया बोला जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान बाड़ी। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य।
2: श्रोताओं, वैसे तो हम लोग रक्तदान प्रतिदिन सुनते रहते हैं कि आज वहाँ अमुक स्थान पर हो रहा है और वहाँ जो है कि रक्तदान बैंक भी है, लेकिन आज हम ऐसे शरीर के अंग से आपको रूबरू कराना चाहेंगे जिससे कि बिल्कुल व्यक्ति जो है कि इस दुनिया को देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है कि किस रंग का, किस प्रकार से जो है कि कौन मोटा पतला, ऊंचा नीचा, आसमान कैसा है, धरती कैसा है, इसका महसूस कर सकता है। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि नेत्र से ही यह संभव है, लेकिन जिस व्यक्ति के नेत्र नहीं है उनसे आप अगर पूछिएगा कि आप क्या महसूस कर सकते हैं, केवल वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन

0: महसूस नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए आँख कितना महत्वपूर्ण अंग है। आज नेत्रदान के बारे में हम बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुधी में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात नेत्र चिकित्सक श्री एस के गुप्ता जी से हो रही है। आपसे हम जानेंगे कि नेत्र दान किस प्रकार किया जा सकता है, कौन व्यक्ति कर सकता है, इसका प्रक्रिया क्या हो सकती है, शेष बातचीत के दरमियान बातें आएंगी। तो डॉक्टर साहब, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: चूँकि ये नेत्र की बात आती है सर, निश्चित रूप से अब चूँकि हम लोग को तो प्रकृति ने क्या खूबसूरत बनाया है, एक शुरुआत से लेकर के अभी तक सभी प्रकार के रंगों का पहचान हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेत्र से दिव्यांग होते हैं जिनका जन्म से ही नहीं होता है या तो फिर बाद में किसी कारणवश जो है कि उनके नेत्र की रोशनी चली जाती है, वे भी पुनः अपना इस संसार को देखना चाहता है, तो क्या ऐसे कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे कि नेत्र दान कर सकता है कोई व्यक्ति और उनको नेत्र फिर लग सकते हैं? जी
1: एकदम है, पूरा प्रक्रिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेत्रदान का भी एक कार्यक्रम चलता है, एक पखवाड़ा चलता है
0: जी,
1: जो कि अप्रैल के महीने में ही चलता है
0: जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि नेत्रदान तो महादान
0: जी, बिल्कुल।
1: मुझे लगता है कि एक रक्तदान होता है तो दूसरा है नेत्रदान, और नेत्रदान तो महादान है। और इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं
0: जी
1: कि जिस व्यक्ति को आँख से संबंधित कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए अगर जन्म से ही वो नहीं देख पा रहा है
0: जी,
1: जन्म से ही वो नेत्र विकलांग है, या फिर कभी चोट वोट लग जाता है, बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उसके कारण से भी आँख खराब हो जाती है
0: जी।
1: तो आँखों में खराबी आ जाने से व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, और ये दिखाई ना देना सबसे बड़ा आँखों का कारण होता है कॉर्निया
0: जी।
1: कि अगर कॉर्निया मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आँखों का सबसे बीच वाला काला पार्ट होता है उसी को कॉर्निया बोलते हैं हम लोग
0: जी,
1: जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है
0: जी,
1: उसमें आर पार देखा जा सकता है। लेकिन कभी कभी चोट लगने से या कोई दुर्घटना हो जाने से, आँखों में चोट लग जाए, दुर्घटना होने से उसकी जो ट्रांसपेरेंटी पारदर्शिता है
0: जी,
1: वो खत्म हो जाती है या खराब हो जाती है, जिसके कारण से किसी भी व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है
0: जी।
1: तो नेत्रदान में सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उनको आँख लगवाना ही जरूरी हो जाता है, या मैंने अपने ही गांव में ही सुना था कि नई आँख या आँख लगवाया जाता है
0: जी।
1: तो ये वही चीज़ है, नेत्रदान में वही चीज़ें आती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेत्रदान बहुत बड़ा दान है और इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, इसमें जैसे रक्तदान तो प्रत्येक व्यक्ति 4 महीने में उसके बाद या इस प्रकार से जीवित रहने पर सब करते रहते हैं
1: जी।
0: क्या नेत्रदान की भी प्रक्रिया यही
1: जी,
0: है
1: जी। नेत्रदान की प्रक्रिया है, लेकिन उससे अलग प्रक्रिया है
0: जी,
1: और टोटली अलग प्रक्रिया है
0: जी।
1: नेत्रदान करने का प्रोसीजर क्या है मैं बता दूं
0: जी।
1: जैसे कोई भी व्यक्ति अगर नेत्रदान करना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर हैं। जैसे अगर उनको नेत्रदान करना है तो हमारे देश में या हमारे स्टेट में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा
0: जी।
1: जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक सीतापुर है, वहाँ पर भी नेत्रदान होता है और वहाँ इसका एक नेत्र बैंक होता है
0: जी,
1: जहाँ पर आँखों को सुरक्षित रखा जाता है। और अलीगढ़ में एक डॉक्टर मोहनलाल मेमोरियल गांधी आई हॉस्पिटल करके है, वहाँ भी आई बैंक है
0: जी,
1: वहाँ पर भी जा कर के आँखों को नेत्रदान भी कर सकते हैं और आँख को लगवा भी सकते हैं। तीसरा हमारे वाराणसी BHU में भी नेत्र बैंक है, आई बैंक जिसे बोला जाता है, वहाँ पर भी ये सब प्रोसीजर होते हैं। और भी तमाम हैं लेकिन ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं
0: जी।
1: लेकिन अब मैं आता हूँ इस टॉपिक पे कि क्या कोई व्यक्ति अगर नेत्रदान करना चाहे तो उसको क्या करना
0: बिल्कुल पड़ेगा।
1: तो उसे ये तो पहली बात तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, दूसरा चीज है कि अगर वो नेत्रदान करना चाहता है तो उनको जो मैं अभी संस्थाएं का नाम लिया
0: जी,
1: या जो मैंने अभी नेत्र हॉस्पिटल का नाम बताया,

0: जैसे मैंने सीतापुर बताया, अलीगढ़ बताया, BHU बताया,
1: जी
0: तो वहाँ कोई भी व्यक्ति जा करके एक फॉर्म होता है जिसको वहाँ जाके भरना पड़ता है। उसमें आपको एक कमिटमेंट करना होता है, एक वहाँ अपना एक सहमति देनी पड़ती है कि वो फॉर्म में लिखा रहता है कि जैसे आपका नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी।
1: जी
0: प्लस उसमें लिखा रहता है कि क्या आप निर्दान करना चाहते हैं कि नहीं। तो
1: जी
0: आपने कहा कि हाँ हम निर्दान करना, तो आप प्रोसीजर करेंगे। फिर इसके बाद उसमें क्या होता है कि आपका सहमति के साथ उसमें आपका साइन, आपका आधार कार्ड भी लग सकता है।
1: जी
0: ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, वहाँ फॉर्म भरा जाता है। और वो सब प्रक्रियाएं करने के बाद आपको, शायद जहाँ तक मुझे अभी नॉलेज है, कि एक नंबर वहाँ से उपलब्ध कराई जाती है
1: जी
0: कि जिसके माध्यम से आप वहाँ पे, जब आपको नेत्रदान करने का समय आ जाएगा, तो
1: जी
0: आपको एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके, पहली बात तो एक चीज मैं और बता दूँ इसमें, ये तो
1: जी
0: बात की बात हो जाएगी, कि नेत्रदान के लिए जब आप फॉर्म भर देते हैं
1: जी
0: तो लोगों में थोड़ा एक डर भी रहता है, यार ये नेत्रदान जो होगा, मेरी आंखें कब निकाली जाएंगी, कैसे होंगी। तो उस फॉर्म में भी लिखा रहता है
1: अच्छा
0: कि आपका नेत्रदान का मतलब ये नहीं कि आपके नेत्रदान का मतलब ये होता है जैसे आपकी जब डेथ हो जाएगी,
1: हाँ
0: आपकी मौत हो जाएगी, या आप किसी कारणवश इस दुनिया से आप जाने वाले या चले गए, तो आपके मौत के बाद
1: जी
0: 6 घंटे, लगभग 6 घंटे तक कोई भी व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है,
1: जी
0: तो उसकी आंख जो होती है मरने के 6 घंटे तक जिंदा रहती है।
1: जी जी जी
0: तो अगर उस दौरान 6 घंटे के अंदर
1: जी
0: अगर उनकी आंख निकाल ली जाए
1: जी
0: और किसी को लगा दी जाए,
1: जी
0: तो वो आंख जो है काम करना शुरू कर
1: शुरू
0: देता
1: कर
0: है।
1: देता है। अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: एक
1: अच्छा
0: चीज मैं और बताना चाहता हूँ इसमें, लोगों में एक भ्रम रहता है कि आंख निकाली जाती है।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मैं आपको ये बता दूं कि पूरी आंख नहीं निकाली जाती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: इसका
1: हाँ
0: तरीका यह है कि इसमें आंख का एक पार्ट, जो कार्निया, जिसको मैंने अभी शुरू में बताया कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी होती है, बस उसी कार्निया को ही काट करके निकाल के एक लिक्विड होता है उसमें उसको रख दिया जाता है
1: जी जी
0: आई बैंक में।
1: हाँ हाँ हाँ
0: उसी को जिसको जिसको जरूरत है, उसका एक समय होता है एक्सपायरी का, समय के अनुसार उसको बुला के लगा दी जाती है। तो पहली बात, ये भ्रम कोई भी व्यक्ति निकाल दे कि हाँ भाई पूरी आंख है,
1: पूरी
0: आंख
1: आग
0: नहीं निकाली
1: निकाल
0: जाती
1: करके
0: है,
1: मतलब
0: बस
1: सूरत कर देंगे।
0: कॉर्निया को
1: जी
0: निकाला जाता
1: हाँ
0: है,
1: जी जी
0: जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे आंख का, और जिसको आज तक दुनिया में कोई आर्टिफिशियल नहीं बना पाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ
0: आर्टिफिशियल आज तक ना बना है, कई बार लोगों ने बनाया, बहुत सारे वैज्ञानिक, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉर्निया,
1: जी
0: और
1: जी
0: इसी कॉर्निया को ही आंखों में से निकाल के
1: जी
0: आई बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। इसी पार्ट को मरने के बाद, मरने के 6 घंटे के अंदर इसी पार्ट को निकाल के रखा जाता है,
1: जी
0: फिर जिसको जरूरतमंद को लगा दी जाती है।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: ये
1: है।
0: तो हो गया आपका लगाने का और प्रोसीजर निर्दान का।
1: जी जी जी जी
0: और नेत्रदान बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा सोचें अगर कि भाई हम तो नहीं हैं,
1: जी
0: लेकिन दुनिया में हमारी आंखें हैं,
1: आंखें देखती
0: कम से कम
1: रहेंगी।
0: मैं आंखों, मैं तो नहीं, लेकिन मेरी आंखें दुनिया देख रही है।
1: बिल्कुल
0: तो ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सौभाग्य की बात है। नेत्रदान करना बहुत ही किस्मत की बात होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और रियल बताएं तो मैं अपना नेत्रदान कर चुका हूँ
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी।
1: डॉक्टर साहब
0: मैं
1: ये
0: अपना नेत्रदान सन 2003 में ही कर दिया हूँ।
1: अच्छा जी जी
0: तो
1: जी
0: मेरा ये है कि मेरा, जब भी मेरी डेथ होगी तो 6 घंटे के अंदर मेरी आंख निकाल ली
1: जैसे
0: जाएगी।
1: इसमें एक बात और आ रही
0: जी
1: है
0: जी
1: डॉक्टर साहब,
0: बताएं
1: जैसे
0: बताएं।
1: कि BHU हो गया, अमुक अमुक स्थानों पर
0: हाँ,
1: इसके
0: जी
1: नेत्र
0: जी
1: बैंक हैं, और मान लीजिए हम लोग दुधी क्षेत्र में हैं, दूर दूर स्थानों पर हैं, शायद 6 घंटा के अंदर वहाँ तक ना पहुँचा जा सके, ऐसी स्थिति में मतलब कैसे इसको स्टोर किया जा
0: देखिए यही
1: सकता है।
0: चीज है ना कि बहुत दूर दूर के लोगों के लिए ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।
1: जी जी जी
0: और इसके लिए तो मैं यही इतना कह सकता हूँ कि एक कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा।
1: जी जी जी
0: और ऐसा मान लीजिए आप दूर के हैं, तो आपको 6 घंटे का समय आपको नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप ये 6 घंटे के अंदर आप आँख, अगर जैसे वहाँ आपको लगवाने जाना ही है,
1: जी
0: मान
1: जी
0: लीजिए आप लगवाना चाहते हैं, निकालने की जहाँ तक अगर 6 घंटे की बात आप कर रहे हैं, तो निकालने के लिए तो एक घंटे आधे घंटे में हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा जी।
0: उसके लिए BHU नहीं जाना है,
1: लेकिन वहाँ पहुँच
0: वो वहाँ से, हाँ जी, आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी अस्पताल जिसे मैं ही यहाँ पर हूँ, तो कोई व्यक्ति आके मुझसे कहते हैं मुझे नेत्रदान करना है,
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रक्रिया इसकी यहीं से हो जाएगी।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर लगवाने के लिए जाना है,
1: हाँ,
0: भाई 6 घंटे के अंदर मुझे लगवाना है,
1: जी,
0: लगवाने के लिए 6 घंटा कोई मतलब नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो निकालने का प्रोसीजर है,
1: निकालने का मतलब
0: उसको 6 घंटे के अंदर आप निकाल लीजिए।
1: जी जी।
0: और वो इसके बाद केमिकल लगे तो महीना दो महीना
1: स्टोर में
0: हो जाता है, तो आपको निकालने के 6 घंटे प्रक्रिया है, लगाने के 6 घंटे प्रक्रिया नहीं होती।
1: ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है।
0: निकालने के 6 घंटा है, लेकिन लगाने के 6 घंटा नहीं है, वो 10 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो लगा सकते हैं।
1: तो निश्चित रूप से तो एक लाभ भी बता दी गई कि मतलब कम से कम मेरा नेत्र।
0: और अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान कर दिया BHU जाके या सीतापुर जाके, तो उसके लिए उसको सीतापुर नहीं जाना है,
1: जी जी,
0: बस उसको अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में कांटेक्ट कर लेना है कि मैं अपना नेत्रदान किया हूँ और मैंने ऐसे ऐसे में अपना जो भी चीजें बता दी जाए, वहां पर आपके आएंगे और आपके 6 घंटे के अंदर आपके बस वही छोटा सा पार्ट जो कार्निये का
1: वही निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि चेहरा को बिढ़ंगा कर दिया
0: गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा
1: ये भ्रम जो रहती है,
0: ये बड़ा भ्रम था, लोग कहते थे नहीं, तो मैं बता दूं कि आंख को कुछ नहीं निकाला जाता है, बस आंख का जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्निया, बस उसी खाली निकाला जाता है। वो भी बहुत ही ऐसे ऐसे लोग लगाया भी किसको जाएगा, ऐसे नहीं सब लगाया जाएगा,
1: हाँ, हाँ,
0: वो उनको लगाया जाएगा जिसको उनको दिखेगा,
1: बिल्कुल।
0: तो इसके लिए क्या होता है, लगाने से पहले पूरी आंख चेक की जाती है, किसका आंख सही है, किसको काम करेगा, फिर जिस व्यक्ति को सूट करता है, जिसको व्यक्ति को लगाने में सफलता मिलेगी, उस व्यक्ति को लगा दी जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपको रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं,
0: जी जी,
1: तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आमजन को?
0: जी, आमजन को मैं नेत्र के बारे में यही, आंखों के बारे में यही कहूंगा कि आंखें बड़ी अनमोल हैं।
1: जी,
0: आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन आंख नहीं खरीद सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आंखें आपको बाजार में भी नहीं मिलेंगी, आंखों का आर्टिफिशियली नहीं कुछ है,
1: जी,
0: कि कोई बना है कहीं से कुछ लगवा ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको बड़ा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अच्छे से अच्छे इसका देखभाल करें।
1: जी,
0: और देखभाल करने के लिए मैं 2-3 चीजें बता दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आंखों के देखभाल के यही 2-3 चीजें कर दे, तो मैं आपको कह सकता हूँ, तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उस व्यक्ति की आंख जल्दी खराब नहीं होगी। पहला काम उसको ये करना है, जैसे ही सुबह उठे सबसे पहले ताजा पानी से, साफ सुथरा पानी से आंख को बढ़िया से धुल दे।
1: बिल्कुल।
0: और धुलने के बाद जो है कुछ देर के लिए आंख को एक शुद्ध वातावरण में सुबह के समय, ज्यादा नहीं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा घूम टहल ले, एक काम ये करना है। और दूसरा काम ये करना है कि जैसे आपको कहीं भी जाते हैं जहां हवा चलता है, धूल डस्ट उड़ता है, तो उसके लिए एक सेफ्टी ग्लास यूज करें। सेफ्टी ग्लास का मतलब जैसे आजकल ऑटोमेटिक ग्लास आते हैं, इस तरह के चाइना वाला ग्लास नहीं, जो मार्केट बिकते हैं सब ग्लास नहीं। अब तीसरा की कोशिश करें कि आप हर 6 महीने में एक बार आंख चेक कराएं।
1: बिल्कुल।
0: इसका प्रोसीजर है कि 6 महीने में अगर आपने एक बार भी आंख चेक करा लिया, तो आपकी आंख में क्या कमी क्या नहीं पता चल जाता है, और वो समय उसी समय ठीक भी हो जाता है, और आंखों के लिए कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके लिए
1: तो श्रोताओं, देखें, ये डॉक्टर SK गुप्ता जी थे, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी से नेत्र चिकित्सक। इतना अच्छा जानकारी दिया आपने कि नेत्र दान महादान, और उसमें ये कोई सोचता है कि जो अपना नेत्र या चेहरा खराब हो जाता है वो भी नहीं, केवल कार्निया से मतलब है। और लगभग आपने बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया, आपने सुना। इतनी अच्छी जानकारी के लिए श्री SK गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे नेत्रदान है जीवन का महादान विषय पर डॉक्टर SK गुप्ता नेत्र चिकित्सक से जगत नारायण की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोता, आइए अब आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं दे दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार रिंकी देवी, पत्नी अरविंद कुमार, निवासी ग्राम गौरी निस्प, थाना रावर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 7 फरवरी 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, गोल चेहरा, इकहरा बदन। इन्होंने काले रंग की साड़ी, लाल रंग की शॉल तथा पैर में काले रंग की जूते पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार

आरती पत्नी गोविंद कुमार निवासी शिवा पार्क शिवद्वार गली वार्ड नंबर 4 रेणुकूट थाना पिपरी जनपद सोनभद्र जो दिनांक 5 फरवरी 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 21 वर्ष लंबाई 5 फीट गोरा रंग लंबा चेहरा दोहरा बदन इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार गीता देवी पत्नी कृष्णा निवासी ग्राम मारकुंडी थाना चौपन जनपद सोनभद्र जो दिनांक 2 फरवरी 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 26 वर्ष लंबाई 4 फीट 6 इंच सांवला रंग गोल चेहरा इन्होंने हरे रंग की साड़ी और पैर में सैंडल पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 7:18 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों

0: की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि वो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल चाहिए, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य है।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने दो दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
5: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए एक माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
6: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 271,093 सीटों के सापेक्ष 400,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्ट्रीट डांसर के इस गाने के साथ, जिसे आवाजें दी हैं बादशाह और नेहा कक्कड़ ने।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: हाँ सही है, सही है।

0: रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: टोनी कक्कर और नेहा कक्कर की आवाजों में अब लीजिए सुनिए फिल्म लुका छुपी के इस गाने को।

0: बेनी दयाल, अदिति सिंह शर्मा और सोहेल सेन की आवाज़ों में अभी आपने सुना इस गाने को, जिसे हमने लिया था फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म में डोमिनिक सेरेजो, क्लिंटन सेरेजो और लॉय मेंडेसा को। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में फिल्म कॉकटेल के इस गाने को।

गुस्ताख इश्क, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। और इसी अंतिम गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सबरस।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के उबरा केंद्र को FM 102.7 पर और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत और कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में इस गजल को।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के उबरक हिंद से आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

चंदन दास के गाए इसी गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम में सबसे पहले गाना सुनिए फिल्म बेटा से। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और उदित नारायण को। फिल्म थी हम है राही प्यार के।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के उबरा केंद्र को FM 102.7 पर। और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 और 7 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गजल को। आकाशवाणी के उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत FM 102.7 पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अब लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में इस नज्म को।

0: जगजीत सिंह के गाए इसी नज्म के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सुगम संगीत का ये अंक। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तत्पश्चात रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार। ये दोनों समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्री

0: की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: पर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
2: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
4: एन इंडियन डो
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
4: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
6: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाए। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
7: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
6: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव की बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को

0: सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive division phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries, who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's human

श्रोताओं, आकाशवाणी का 90 सालों का लंबा सफर एक गौरवशाली सफर रहा है, जिसने भारत की संस्कृति, सूचना और मनोरंजन के इतिहास में एक मील का पत्थर गाड़ा है। साल 1936 में शुरू हुई यह संस्था, जो कभी ट्रांजिस्टर तक सीमित थी, आज डिजिटल युग में ऐप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनमानस से जुड़ी हुई है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से ऑल इंडिया रेडियो और फिर आकाशवाणी तक का ये सफर गरिमामय और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। तरक्की भरा यह सफर, जो सिर्फ कुछ स्टेशन से चल करके सैकड़ों स्टेशन तक पहुंचा और देश के कोने कोने तक लोगों के घर में, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आकाशवाणी के इस महत्वपूर्ण सफर के बारे में चर्चा आपसे होती रहेगी, लेकिन उससे पहले ये गीत

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी ने भारत के लोगों के दिलों पर राज किया है, विशेषकर गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां केवल मनोरंजन की एक आवश्यकता ही नहीं बल्कि सूचना, समाचार और जानकारी की जरूरत भी थी। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के अपने आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई है। सुबह की प्रार्थना हो या शास्त्रीय संगीत, ज्ञान विज्ञान और कृषि कार्यक्रम, कुछ भी हो, इन सब के माध्यम से इसने देश के सामाजिक ताने बाने को गढ़ा है। आकाशवाणी के सफर के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है, लेकिन कुछ बातें अगले अंक में। और अब लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गाना।

इसी अंतिम गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाजों के साथ। फिल्म है जानवर।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना फिल्म पापा द ग्रेट में, और कार्यक्रम का आखिरी गाना आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाज़ों में फिल्म है सत्ते पे सत्ता।

और इसी अंतिम गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अंक। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 9:45 पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। और कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए अभिजीत की आवाज में इस गैर फिल्मी गीत को।

आकाशवाणी के उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए हरिहरन की आवाज में इस गैर फिल्मी गीत को।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत का ये अंक ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। स्टूडियो में इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधारा, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सखे टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाजों के साथ। इस गाने को हमने लिया है फिल्म सैयारा से।

अफगान की फ्लाइट बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में राहत फतेह अली खां को। आकाशवाणी के उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा, और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह को फिल्म टाइगर 3 में।

नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म गदर 2 के इस गाने को। आकाशवाणी के उबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। विशाल मिश्रा और शर्ली सेठिया की आवाज़ों में अब लीजिए सुनिए फिल्म 5 वेडिंग्स के इस गाने को।

और इसी अंतिम गाने के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम रसधारा का ये अंक। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले लीजिए सुनिए विदुषी गिरिजा देवी का ठुमरी गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद राशिद खान को, और इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है।

0: मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है, FM 102.7 पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।